0: قتل کیا تھا اور قاتل کون تھا.
1: सौदागर मूवी का ये गाना आपने सुना. आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक, मोहम्मद अजीज और सुदेश भोसले की आवाज में ये वाला गाना था. सुबह के 5:32 हो चुके हैं और पता नहीं आप मेरी तरह यकीन कर पा रहे हैं या नहीं, पता नहीं आपको फील होता होगा या नहीं कि इतनी जल्दी साल बीतने वाला है. मतलब हम सितंबर में हैं, आज 5 सितंबर हो गई है, घड़ी के कांटे भाग रहे. कभी कभी मुझे ऐसा लगता है अरे मतलब अभी तो कुछ किया ही नहीं है, बहुत कुछ करना बाकी है. इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जीवन के पलों को ना खुशहाल बनाना चाहिए. जो भी है बस यही पल है. भोर सुहानी सुनते रहिए, मैं हूँ पंकज आपके साथ सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर.

की है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इस जीवन के पलों को ना खुशहाल बनाना चाहिए, जो भी है बस यही पल है। भोर सुहानी सुनते रहिए, मैं हूँ पंकज आपके साथ सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।

ब्लैक मूवी का ये गाना था अलका याग्निक की आवाज़ में, एकदम से मैं ब्लैंक हो गया था। खैर, गर्मियां बस जो हैं जाने ही वाली हैं और सर्दियां शुरू होने वाली हैं, फिर हम दिल्ली वाले जो हैं आलू पूड़ी ज़्यादा खाएंगे और फिर वो भी तीखी। मतलब देखिए, वैसे तो हम दिल्ली वाले खाने पीने के मामले में मौसम पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन ठंडी में हम लोग ना दो मेथी के पराठों की जगह चार खा लेते हैं और उसमें बड़ा मज़ा आता है। नवंबर दिसंबर में यानी मुफ्त की एसी जैसी ठंडी हवा में मिलती है। और बाकी हाँ, एक बार फिर से आपको जन्माष्टमी त्यौहार की ढेरों बधाई। बाकी गणपति जी के आगमन की तैयारी भी जोर शोर से होने लगी है। 14 सितंबर से श्री गणेश जी हमारे घर विराजमान होंगे और घेवर के बाद जो सबसे ज़्यादा डिमांड होगी वो होगी मोदक की मार्केट में। यानी खुशियों के दिन आ रहे हैं। बाकी अच्छा, खुशियों के दिन आ रहे हैं, लेकिन मैं अब जा रहा हूँ भोर सुहानी शो से और आपसे अनुमति मांग कर जाऊँगा। बाकी दोबारा आपसे जल्दी मिलूंगा और हाँ, अगले घंटे आपके साथ होंगी सुनीता चौहान अर्पण शो में। तो इसी तरह FM गोल्ड चैनल सुनते रहिए। और वैसे तो आपको पता ही है, लेकिन मैं उस टाइम नहीं था तो मैंने सोचा मैं आपसे एक बात शेयर कर लेता हूँ कि FM गोल्ड 1 सितंबर को जो है पूरे 25 साल पूरे कर चुका है। आपकी ढेर सारी विशेष देखी थी मैंने, तो उसके लिए भी आपका थैंक यू सो मच। तो बस ऐसे मेरे मन में आया कि आपसे बात करूँ इस बारे में भी। तो अब मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, अभी के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्ते।

0: ആകാശവാണി ഇനി അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ സമാചാർ പ്രഭ, തുടർന്ന് മോർണിംഗ് ന്യൂസ് ഡൽഹിയിലെ.
1: നമസ്കാർ, ആകാശവാണി സേ സമാചാർ പ്രഭാത് കെ സാത്ത് മൈ മുകേഷ് കുമാർ. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया. 48 शिक्षकों को आज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे. सरकार ने ISO टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल की अनुमति तथा कड़े सुरक्षा नियमों का प्रस्ताव रखा. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत संघर्ष समाप्त करने में यूक्रेन और रूस के साथ निरंतर संपर्क में है. संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका का सटीक आकार दर्शाने वाले नए विश्व मानचित्र को अपनाने के पक्ष में मतदान किया. विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण अहमदाबाद में आज से शुरू और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना पाकिस्तान से. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया है. शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारने और चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज 48 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा.
2: हर वर्ष 5 सितंबर को पूरे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है. यह दिन देश के पूर्व राष्ट्रपति, प्रसिद्ध शिक्षाविद, लेखक और दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है. यह अवसर राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों और शिक्षाविदों की महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करता है. शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन को बदलते हैं, पीढ़ियों को दिशा देते हैं और समाज की नींव को मजबूत करते हैं. इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह नई दिल्ली 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी. चयनित 48

0: शिक्षक 27 राज्यों 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संगठनों से हैं। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल शाम राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं से बातचीत की। श्री जोशी ने कहा कि शिक्षकों को बच्चों को 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और उन्हें हर क्षेत्र में सक्षम बनाने की दिशा में काम किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। पिछले 100 वर्ष में इस संस्थान ने कई विद्वान, पेशेवर और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को तैयार किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज चेन्नई इंडिया वॉल्व सम्मेलन में शामिल होंगे। यह हृदय से जुड़ी बीमारियों का उपचार बेहतर बनाने पर केंद्रित एक राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन है। उपराष्ट्रपति गिंडी में इंडिया वॉल्व पंजिका का विमोचन भी करेंगे। सरकार ने आईएसओ टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल तक की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पेट्रोलियम संशोधन नियम 2026 का मसौदा जारी किया है। इसमें आवेदन प्राप्त होने पर 7 कार्य दिवस में मंजूरी देने का प्रस्ताव है। इसके अनुसार पेट्रोलियम से भरे या पेट्रोलियम के लिए इस्तेमाल होने वाले आईएसओ टैंक कंटेनरों को बिना अनुमति आयात नहीं किया जा सकेगा। आवेदन पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करना होगा और इसके साथ जरूरी तकनीकी और सुरक्षा दस्तावेज जमा कराने होंगे। मंत्रालय ने मसौदे पर 30 दिन के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद नियमों में बदलाव किया जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल शुरू हो गया। सम्मेलन के लिए व्यापक स्तर पर सुरक्षा और तैयारियां की जा रही हैं। आज मोटर कारकेड का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास सवेरे 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक सड़कों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। यातायात पुलिस ने रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत संघर्ष समाप्त करने के लिए रूस और यूक्रेन के लगातार संपर्क में है। वॉर्सो में पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिरोस्की के साथ बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि युद्ध का कोई विजेता नहीं होता।
5: India believes that endless war.
6: भारत का मानना है कि अंतहीन युद्ध समाप्त होना चाहिए और युद्ध का कोई विजेता नहीं होता। हर अतिरिक्त दिन का अर्थ है अधिक मौतें, अधिक तबाही, दोनों देशों के लिए अधिक नुकसान और बाकी दुनिया के लिए अधिक लागत। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस चिंता को सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया था।

0: इसलिए हमारे प्रयास बातचीत और कूटनीति को बढ़ावा देने पर केंद्रित होने चाहिए।
1: प्रमोटिंग डायलॉग एंड डिप्लोमेसी।
2: विदेश मंत्री ने कहा कि भारत संघर्ष समाप्त करने में हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर रूस और यूक्रेन का दौरा करेंगे। दोनों का उद्देश्य रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए शांति समझौते की कोशिश करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफ्रीका का वास्तविक आकार बेहतर ढंग से दिखाने वाले नए विश्व मानचित्र के पक्ष में मतदान किया है। 164 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया जबकि अमरीका ने इसके विरुद्ध मतदान किया। 6 देश मतदान से अलग रहे। मर्केटर मानचित्र में अफ्रीका का आकार वास्तविकता से बहुत छोटा दिखाई देता है जबकि अफ्रीका ग्रीनलैंड से लगभग 14 गुना बड़ा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
2: मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन तक पूर्वोत्तर राज्यों बिहार मध्य प्रदेश हरियाणा चंडीगढ़ उत्तराखंड सिक्किम बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की आशंका है। लखनऊ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भी कई जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं।
4: राज्य में अयोध्या वाराणसी आजमगढ़ बलिया गोरखपुर लखीमपुर खीरी चित्रकूट और बाराबंकी सहित 26 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। बाढ़ राहत आयुक्त के मुताबिक लगभग 3.5 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित होने के बावजूद राहत और बचाव तंत्र की सक्रियता से लगभग 72,000 बाढ़ राहत किट और 3.5 लाख से अधिक प्रभावितों को लंच पैकेट वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 17,000 से ज्यादा लोगों को शरणालयों सहित सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है।
5: आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 8,50,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। पशुपालन विभाग के अनुसार करीब 70,000 पशु भी प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की सुविधा के लिए 700 नावों का परिचालन किया जा रहा है। वहीं बाढ़ राहत शिविर और सामुदायिक रसोई घर भी संचालित किए जा रहे हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में गंगा और सोन नदियों के जलस्तर में कुछ कमी आने की संभावना है। हालांकि पटना में पुनपुन नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण गया पटना रेलखंड पर रेल परिचालन प्रभावित हुआ है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
2: भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व कल पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ा दही हांडी उत्सव आज महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
6: मुंबई और आसपास के जिलों में दही हांडी भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ा एक पारंपरिक उत्सव है। इसमें गोविंदा मानव पिरामिड बनाकर मिट्टी के हांडी फोड़ते हैं। इस उत्सव के दौरान कुछ गोविंदा कभी कभी चोटिल हो जाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए बीएमसी ने अस्पतालों को पूरी तरह तैयार रहने और घायल गोविंदाओं को मुफ्त उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने 1,60,000 गोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज की घोषणा की है। अस्पताल में भर्ती होने, स्थायी पूर्ण या आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में 1,00,000 से 10,00,000 रुपए तक का बीमा लाभ दिया जाएगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
2: विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू होगा। इसमें 19 देशों के 105 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल शाम प्रतियोगिता का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत आने वाले वर्षों में खेलों का प्रमुख केंद्र बनेगा।
7: 19 देशों से 108 से ज्यादा पैरा एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं उस वक्त कि अहमदाबाद, गुजरात और भारत आने वाले दिनों में खेल जगत के, चाहे वो ओलंपिक्स से जुड़े हुए खेल हो, सभी प्रकार के खेल का एक बहुत बड़ा सेंटर बनने वाला है।
2: एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच दुबई में रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत ने थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
8: धन्यवाद मुकेश। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यूएस उपग्रह के सफल प्रक्षेपण की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने लिखा है इसरो ने अंतरिक्ष में स्थापित किया तीसरा नेत्र। जनसत्ता की सुर्खी है देश के पहले उपग्रह का प्रक्षेपण इसरो की एक और कामयाबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो और उद्योग जगत की साझेदारी को अंतरिक्ष क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया, कहा हमारे देश के लिए गर्व का पल। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री जिस प्रोजेक्ट का करेंगे लोकार्पण उसकी 6 महीने तक होगी निगरानी। कुछ घटनाओं से सीख लेकर NHAI ने कार्यक्रमों की SOP में जोड़े नए दिशा निर्देश। दैनिक भास्कर ने शिक्षक दिवस पर विशेष सुर्खी से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विशेष लेख साझा करते हुए लिखा है विजेता होते हैं शिक्षक लेकिन शिष्य से पराजित होने की शिक्षा उन्हें महान बनाती है। पंजाब केसरी ने शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के लेख पर विकसित भारत के सफर में शिक्षकों की भूमिका देते हुए लिखा है ये दिन सिर्फ सराहना करने के एक दिन से कहीं ज्यादा मायने रखता है। पंजाब केसरी की सुर्खी है नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। मथुरा में रात 12 बजते ही हर तरफ उल्लास और हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की का उत्साह देखने को मिला। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है ब्रज में बाजे बधाई नंद घर आई कन्हाई। नवभारत टाइम्स ने चमत्कार शीर्षक से दिया है नेपाल में सुरंग से 9 दिन बाद 2 को जिंदा बचाया, जन्माष्टमी पर सुरक्षित निकाले गए। फोरमैन संजय शाह ने कहा हरे कृष्ण महामंत्र जपता रहा। अमर उजाला की सुर्खी है सुरंग में गूंजा जिंदगी का मंत्र। राजस्थान पत्रिका ने बदलेगी गैजेट की दुनिया देते हुए लिखा है बेकार जाने वाली गर्मी से भी बनेगी काम की बिजली।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया। 48 शिक्षकों को आज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। सरकार ने ISO टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल की अनुमति तथा कड़े नियमों का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा भारत संघर्ष समाप्त करने में यूक्रेन और रूस के साथ निरंतर संपर्क में है। संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका का सटीक आकार दर्शाने वाले नए विश्व मानचित्र को अपनाने के पक्ष में मतदान किया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी।

0: Please stand by for our next program. This is Akashvani. We now bring you live description of the presentation ceremony of the National Award to Teachers, being organized by Ministry of Education, Government of India, in the gracious presence of Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, at Vigyan Bhavan, New Delhi. Our commentators are Shoaib Yar Khan in Hindi and Kaushik Roy in English.
1: ये आकाशवाणी है। अब हम आपको सुनवाते हैं नई दिल्ली के विज्ञान भवन से शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह का सजीव विवरण। विवरण दे रहे हैं शोएशियार खान हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में। आइए विज्ञान भवन चलें।
2: सभी श्रोताओं को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं शोएशियार खान और अंग्रेजी में आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मेरे साथ हैं कौशिक राय। आकाशवाणी के इस सीधे प्रसारण में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देश की राजधानी नई दिल्ली के विज्ञान भवन के भव्य प्लेनरी हॉल से आपके साथ सीधे जुड़े हुए हैं। अवसर है शिक्षक दिवस का और समारोह है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 का। ये वो अवसर है जब राष्ट्र उन शिक्षकों को सम्मानित करता है जिन्होंने अपने ज्ञान, समर्पण, नवाचार और सेवा भाव से विद्यार्थियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। आज भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश के 48 उत्कृष्ट स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस गरिमापूर्ण समारोह का आयोजन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय एवं कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस समय विज्ञान भवन का प्लेनरी हॉल देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए शिक्षकों की उपस्थिति से विशेष रूप से गौरवपूर्ण दिखाई दे रहा है। इन शिक्षकों के चेहरों पर उत्साह है, गर्व है, वर्षों की मेहनत के बाद मिले इस राष्ट्रीय सम्मान की खुशी है। आज यहां उपस्थित प्रत्येक शिक्षक अपने साथ अपने विद्यालय की एक कहानी लेकर आया है। किसी के साथ ग्रामीण भारत की कहानी है, किसी के साथ दूर दराज के क्षेत्र में शिक्षा की अलग जगाने की कहानी है, किसी ने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित की है तो किसी ने तकनीक और नवाचार के माध्यम से शिक्षा को नई दिशा दी है। आज इन सब प्रयासों को राष्ट्र की ओर से सम्मान मिलने जा रहा है। कौशिक।
3: गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। दिस एंशियंट मंत्र कैप्चर्ड द रिवरेंस दैट इंडिया हैज फॉर इट्स टीचर्स। ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल टीचर्स डे, from the family of Akashvani and Prasar Bharati, we convey our best wishes to all the teachers of the country who are the builders of Viksit Bharat 2047. And as my colleague Shoaib Yar Khan mentioned that today we have 48 teachers who excel in their fields and who are building the next generation of India, the leaders of India's tomorrow, who will be guiding us towards Viksit Bharat at 2047. These teachers, as Shoaib mentioned, come from far and distant places of India, but every one of them carry a success story. And it is indeed a great moment for all these teachers who will be receiving the

0: the philosopher president of India, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, who was the president of India from 1962 to 1967. Dr. Radhakrishnan was an academic of repute, a philosopher, and he was also a statesman. Dr. Radhakrishnan was born on the 5th of September 1888 at Tiruthani of North Arcot District in erstwhile Madras Presidency. His family hailed from Sarvepalli village in Nellore district of Andhra Pradesh, and he spent his early years in Tiruthani and Tirupati. Dr. Radhakrishnan was awarded scholarships throughout his academic life and joined the Voorhees College in Vellore for his high school education. And he graduated from the Madras University at the age of 16. Dr. Radhakrishnan studied philosophy, and he wished to study mathematics also. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan wrote his bachelor's degree thesis on the ethics of the Vedanta and its metaphysical presuppositions. Dr. Radhakrishnan became president of India. Some of his erstwhile students and friends requested him to allow them to celebrate his birthday. But he replied, instead of celebrating my birthday, it would be my proud privilege if 5th of September is observed as Teacher's Day. Thus, his birthday has since been celebrated as Teacher's Day in India. And the Honorable Rashtrapati Ji, Srimati Draupadi Murmu, will arrive at the plenary hall of Vigyan Bhavan in just a short while from now.
1: Mananiya Rashtrapati Srimati Draupadi Murmu, thodi hi der mein Vigyan Bhavan mein 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेगी। इस कार्यक्रम में प्रत्येक पुरस्कार विजेता के द्वारा किए गए अनुकरणीय कार्य को दर्शाने वाले लघु वृत्तचित्रों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। श्रोताओं, 5 सितंबर भारत के लिए केवल एक तारीख नहीं, ये दिन है देश के महान दार्शनिक, शिक्षाविद और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती का। इसी कारण भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का जीवन इस बात का उदाहरण था कि शिक्षा केवल रोजगार प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, शिक्षा व्यक्ति के विचारों को विकसित करती है, उसके चरित्र का निर्माण करती है और उसे समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनाती है। इसीलिए शिक्षक का स्थान केवल कक्षा तक सीमित नहीं है, शिक्षक भविष्य का निर्माण करता है। श्रोताओं, एक सुंदर विचार है, शिक्षक वो नहीं जो केवल पाठ पढ़ाए, शिक्षक वो है जो जीवन पढ़ना सिखाए। और वास्तव में एक शिक्षक विद्यार्थी को केवल ये नहीं बताता कि क्या पढ़ना है, वो उसे ये भी सिखाता है क्या सोचना है, कैसा सोचना है और सही तथा गलत में अंतर कैसे करना है। यही शिक्षा की वास्तविक शक्ति है। श्रोताओं, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार देश के उत्कृष्ट स्कूली शिक्षकों के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। भारत सरकार के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से इन पुरस्कारों का उद्देश्य उन उत्कृष्ट शिक्षकों के योगदान को सम्मानित करना है जिन्होंने अपने समर्पण से विद्यार्थियों के जीवन को समृद्ध किया है और स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है। इस वर्ष 48 शिक्षकों का चयन किया गया है, इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक हैं। ये शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका चयन राज्य, जिला, राष्ट्रीय स्तर की 3 स्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। श्रोताओं, विज्ञान भवन का यह ऐतिहासिक सभागार उत्सुकता से माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की प्रतीक्षा कर रहा है और अब मैं देख रहा हूँ कि शिक्षा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी इस वक्त सभागार में पधार चुके हैं। उनके साथ शिक्षा राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी जी भी हैं। माननीय राष्ट्रपति के आगमन की सुगबुगाहट यहाँ पर अब बढ़ गई है, लोगों में उत्साह बढ़ गया है, कौतूहल बढ़ गया है और इस वक्त सबकी निगाहें हैं उस द्वार की तरफ जहां से माननीय राष्ट्रपति कुछ ही क्षणों में प्रवेश करेंगी और ये 2026 के राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार प्रदान करेंगी।

0: राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के साथ ही इस समारोह का विधिवत शुभारंभ हो चुका है। माननीय राष्ट्रपति अपना स्थान ग्रहण करते हुए।
1: महोदय, आपकी अनुमति हो तो समारोह का शुभारंभ किया जाए।
0: और अब

0: माननीय राष्ट्रपति से विधिवत
1: गुरुर् ब्रह्मा
0: अनुमति लेकर
1: गुरुर्
0: इस
1: विष्णु
0: कार्यक्रम का
1: गुरुर्देव
0: शुभारंभ किया जा
1: महेश्वर
0: रहा है।
1: गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
0: देश के अलग अलग हिस्सों से आए शिक्षक राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित हैं और पूरे सभागार में सम्मान और उत्साह का वातावरण दिखाई दे रहा है। सभागार में उपस्थित गणमान्य अतिथि और शिक्षकगण राष्ट्रपति का अभिवादन कर रहे हैं। सबकी निगाहें इस वक्त मंच की तरफ हैं और मंच पर आसीन है माननीय राष्ट्रपति के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी, शिक्षा राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी, शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकंता मजूमदार, देवश्री मुखर्जी जो कि सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में, इसके अलावा मिस दीप्ति गौड़ मुखर्जी जो कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी है, और श्री टी के अनिल कुमार सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन विद्यालय।
2: एंड नाउ शॉर्ट फिल्म ऑन द फर्स्ट लॉट ऑफ 24 नेशनल टीचर अवार्डीज।
3: विज्ञान शिक्षा को नई दिशा दी, उन्होंने वर्चुअल बायोलॉजी लेबोरेटरी, एआई इनेबल्ड बायोलॉजी एजुकेशन और क्यूआर आधारित ट्री टॉक जैसे नवाचारों से उन्नत स्टेम अधिगम को सुलभ बनाया, जिसके लिए डॉक्टर दिव्येंदु सेन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
4: सुश्री अमुथा जेनी 22 वर्षों की सेवा में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN समावेशी एवं आनंदमय शिक्षा तथा युवा नेतृत्व के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। कम लागत वाली शिक्षण सामग्री एवं KVS फोनिक्स वर्कबुक विकसित किए। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सुश्री अमुथा जे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
3: पंजाब के पटियाला स्थित राजकीय विक्टोरिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में श्री दिनेश कुमार ने करीब 25 वर्षों से विज्ञान शिक्षा को समृद्ध बनाने में योगदान दिया है। उन्हें पंजाब स्टेट अवार्ड 2020 और टीचर ऑफ द ईयर ऑफ पंजाब अवार्ड 2022 से भी सम्मानित किया गया। विज्ञान शिक्षा में अपने समर्पित योगदान के लिए श्री दिनेश कुमार को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
4: सिक्किम की खूबसूरत पहाड़ियों में पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डिकलिंग में सुश्री सुषमा तमांग ने दूर दराज के विद्यार्थियों की प्रतिभा को पहचान कर उन्हें इंस्पायर मानक इंटरनेशनल YRE कंपटीशन और एशियाई सम्मेलनों में सफलता के लिए तैयार किया, जिसके लिए सुश्री सुषमा तमांग को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। झारखंड के बरमसिया स्थित मिडिल स्कूल बरमसिया में सुश्री मुनमुन भट्टाचार्य जी ने कोयला खनन क्षेत्र के वंचित बच्चों के लिए कम लागत वाली फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी सामग्री, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग और व्यवसायिक कौशल के अवसरों से बच्चों की सीखने की चुनौतियों को कम किया, जिसके लिए सुश्री मुनमुन भट्टाचार्य जी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम जिले के नया ग्राम स्थित गवर्नमेंट मॉडल स्कूल में श्री शांतनु पात्र ने वंचित आदिवासी विद्यार्थियों के लिए समावेशी, तकनीक सक्षम एवं अनुभवात्मक शिक्षा को नई दिशा दी। उन्होंने ARVR, ब्लेंडेड लर्निंग, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग का प्रभावी उपयोग किया। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए श्री शांतनु पात्रा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
3: चंडीगढ़ के मलोया कॉलोनी स्थित राजकीय मॉडल हाई स्कूल में श्री रवि जायसवाल ने विज्ञान शिक्षण को नवाचार, तकनीक और अनुभवात्मक अधिगम से समृद्ध किया। उन्होंने कम लागत में सीवी रमन डोम थिएटर, मोबाइल साइंस लैब तथा पुनर्चक्रित सामग्री से साइंस एंड नॉलेज पार्क विकसित किया। उनके तकनीक सक्षम एवं नवाचारी योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने और बच्चों के लिए सीखने के नए अवसर तैयार करने में सुश्री लालनुन मावी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मिजोरम के लंगलेई स्थित गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक वेंग हाई स्कूल में उन्होंने इंटरैक्टिव ICT टूल्स और फ्री रेमिडियल कोचिंग के जरिए विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता को मजबूत किया। सार्वजनिक शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के अवसर देने के लिए सुश्री लालनुन मावी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से

0: सम्मानित किया जाता है। सुश्री सुनीता यादव ने छत्तीसगढ़ के खिचड़ी स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय में प्रोजेक्टर, लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल आईसीटी उपकरणों से स्मार्ट क्लासरूम तैयार किया। न्योता भोजन और घर घर पुस्तक वाचन जैसे प्रयासों से सुघर पढ़ैया प्लेटफॉर्म ग्रेड प्राप्त किया। ग्रामीण शिक्षा को नवाचार से सशक्त बनाने के लिए सुश्री सुनीता यादव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: हिमाचल प्रदेश के भालेट स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य सुश्री मंजरी वी महाजन ने शिक्षण को बढ़ावा देते हुए कचरा प्रबंधन, कंपोस्टिंग, जल संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में प्रभावी पहल की। शिक्षा में नवाचार और नेतृत्व के उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सुश्री मंजरी वी महाजन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के माया बंदर स्थित पीएम श्री जीएमएसएसएस में श्री जे प्रकाश राव ने बिल्डिंग एज लर्निंग एड अप्रोच के जरिए स्कूल को ही इंटरैक्टिव रिसोर्सेज में बदला। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, डिजिटल रिसोर्सेज, 21st सेंचुरी स्किल्स को मजबूत किया, जिसके लिए श्री जे प्रकाश राव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: सुश्री कुंदा जयवंत बच्छाव ने नगर निगम विद्यालय को ARVR रोबोटिक्स असिस्टिव टेक्नोलॉजी एवं QR आधारित संसाधनों से युक्त आधुनिक शिक्षण केंद्र में परिवर्तित किया। उनके एजुकेशनल पेरेंटिंग अभियान से 150 से अधिक वंचित बालिकाओं को आर्थिक सहयोग मिला। समावेशी नवाचार, बालिका सशक्तिकरण, उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सुश्री कुंदा जयवंत बच्छाव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: बिहार के विदायदिश स्थित उर्दू प्राइमरी स्कूल में सुश्री खुशबू कुमारी ने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, कम लागत वाली शिक्षण सामग्री और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा को सरल, सहज और प्रभावी बनाया। सुश्री खुशबू कुमारी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित PHEL के शासकीय महात्मा गांधी सांदीपनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में डॉक्टर अर्चना शुक्ला ने 15 वर्षों में विज्ञान को प्रयोग, पर्यावरण और खोज से जोड़ा। उन्होंने 1000 से अधिक गौरैया घर, 102 प्रजातियों के पेड़ों का डिजिटल मानचित्रण और प्लांट इमोशन जैसे नवाचार किए, जिसके लिए डॉक्टर अर्चना शुक्ला को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज विजयनगर में डॉक्टर रेणु त्रिपाठी ने 60 गांव के ड्रॉप आउट और स्कूल से बाहर बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ते हुए उन्होंने स्टेम, अटल टिंकरिंग लैब और कम लागत वाली शिक्षण सामग्री के माध्यम से समस्या समाधान को बढ़ावा दिया, जिसके लिए डॉक्टर रेणु त्रिपाठी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। सुश्री भवानी बोमपेल्ली ने नवाचारी शिक्षण के माध्यम से प्री प्राइमरी शिक्षा का विस्तार कर खेल आधारित एवं डिजिटल अधिगम वातावरण विकसित किया तथा कंक्रीट पिक्टोरियल एब्स्ट्रैक्ट पद्धति और कम लागत वाली शिक्षण सामग्री से गणित एवं भाषा सीखने को सरल बनाया। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सुश्री भवानी बोमपेल्ली को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: सुश्री सुमन गोयल ने दिल्ली के पोर्ट कला स्थित राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल टूल्स और स्वयं निर्मित कम लागत वाली टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के माध्यम से सीखने को रोचक और अनुभवात्मक बनाया। बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ा, विद्यालय में स्थिरता और शैक्षणिक प्रगति बढ़ी, जिसके लिए सुश्री सुमन गोयल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। ओडिशा के अली पिंगल स्थित राजकीय उच्च विद्यालय में श्री पदराज उमाकांत नायक के मार्गदर्शन में 50 से अधिक प्रोटोटाइप विकसित हुए, जिनमें कम लागत वाली ऑटोमेटिक प्लेट वॉशिंग मशीन भी शामिल है, जिसके लिए एक विद्यार्थी को भारत सरकार का पेटेंट मिला। वैज्ञानिक सोच, नवाचार और सामुदायिक भागीदारी से ग्रामीण शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए श्री पदराज उमाकांत नायक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित

0: किया जाता है।
1: श्री एस गणेशन भौतिकी शिक्षक ने साइंस थिएटर अनुभवात्मक स्टेम एवं एआई सक्षम शिक्षण के माध्यम से विज्ञान शिक्षा में उल्लेखनीय नवाचार किया। उनके साइंस थिएटर इंटीग्रेशन मॉडल ने नाटक कहानी एवं प्रदर्शन के माध्यम से जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं को सरल और रोचक बनाया, जिसके लिए श्री एस गणेशन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। गोवा के एक्सएम स्थित गुजराती समाज स्पेशल स्कूल में श्री महादेव हनुमंत शिंदे ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षण को नई दिशा दी। उन्होंने 14 गतिविधि आधारित स्रोत पुस्तिकाएं तथा टैबलेट आधारित डिजिटल संसाधन विकसित किए। उनके प्रशिक्षित खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अम्भारत का गौरव बढ़ाया है। श्री महादेव हनुमंत शिंदे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
2: मणिपुर के कोंगबा माखा स्थित लाइको अपर प्राइमरी स्कूल में श्री वांगलिम्बम गोविंद सिंह ने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कहानी और फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के माध्यम से बच्चों की सीखने की क्षमता और भागीदारी को मजबूत किया, जिसके लिए श्री वांगलिम्बम गोविंद सिंह को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: महाराष्ट्र के सतारा स्थित सैनिक स्कूल में श्री शिव प्रसाद अरविंद तिंगारे ने हैंड्स ऑन साइंस एजुकेशन, लो कॉस्ट लर्निंग टूल और इंटरैक्टिव डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा दिया है। उनके विद्यार्थियों ने CSIR इनोवेशन अवार्ड और DSC साकुरा साइंस जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवसर हासिल किए। श्री शिव प्रसाद अरविंद तिंगारे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मध्य प्रदेश के ईदगाह हिल्स स्थित सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सुश्री संगीता यादव ने गणितोत्सव, क्वेस्ट फॉर मैथमेटिक्स, मैथ ई माइंड एंड मैथमेटिक्स जैसी पहलों के जरिए गणित को बनाया रचनात्मक और विद्यार्थियों में समस्या समाधान की क्षमता विकसित की, जिसके लिए सुश्री संगीता यादव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। ओडिशा के मयूरभंज जिले के करंजिया स्थित EMRS में मोहम्मद जफर आलम ने आदिवासी बच्चों की शिक्षा में आधुनिक तकनीक, खेल और अनुभवात्मक शिक्षण के साथ आदिवासी संस्कृति और विरासत को भी शिक्षा का हिस्सा बनाए रखा, जिसके लिए मोहम्मद जफर आलम को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
3: और अब हमारी विनती है माननीय राष्ट्रपति महोदय आपसे कि कृपया ये पुरस्कार अपने कार्यक्रम में द्वारा प्रदान करें। प्रेसिडेंट ऑफ
4: इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू विल कन्फर द नेशनल टीचर्स अवार्ड्स 2026 ऑन 24 ऑफ द टीचर्स whom a telefilm was played at Vigyan Bhavan, and we can see that the Honorable Rashtrapati Ji, the Union Minister for Education Shri Prahlad Joshi, and the Union Minister of State for Education Shri Jayant Chaudhary, and Dr. Sukanto Majumdar, and other dignitaries are on the dais. And now the first teacher to receive the award is Shri दिव्यंदु सेन फ्रॉम राजस्थान महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल पचपहाड़।
5: और अब वो क्षण आ गया है जिसका सभी को इंतजार था। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 का पुरस्कार वितरण शुरू हो चुका है।
3: दिनेश कुमार पंजाब,
5: पुरस्कार विजेताओं के नाम पुकारे जा रहे हैं।
4: श्री दिनेश कुमार फ्रॉम पंजाब विल रिसीव द नेशनल टीचर्स अवार्ड 2026 फ्रॉम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
5: मंच पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है। एक एक करके सब शिक्षक
4: सुषमा
5: का नाम पुकारा जा रहा है।
3: मुनमुन भट्टाचार्य जी झारखंड,
4: मुनमुन भट्टाचार्य टीचर फ्रॉम झारखंड, रियली प्राउड मोमेंट फॉर दीज नेशन बिल्डर्स ऑफ इंडिया टू रिसीव द नेशनल टीचर्स अवार्ड।
3: शांतनु पात्र वेस्ट बंगाल।
5: और अब पश्चिम बंगाल के शांतनु जी को ये शिक्षक पुरस्कार दिया जा रहा है। 48 शिक्षकों को आज सम्मानित किया जा रहा है।
3: रवि जायसवाल चंडीगढ़।
5: और अब चंडीगढ़ के रवि जायसवाल माननीय राष्ट्रपति से सम्मान ग्रहण करते हुए।
3: ललनुन मोई मिजोरम।

0: from Mizoram, Ms. Lanun Mawi. And what a proud moment it is indeed for these teachers to receive the National Teachers Award
1: Sunita
0: from
1: Yadav,
0: Honorable Rashtrapati Ji. And Sunita Yadav Ji from Chhattisgarh will be receiving the National Teachers Award 2026 from the Honorable Rashtrapati Ji.
1: Manjari Ji Mahajan, Himachal Pradesh.
2: Aur ab Himachal Pradesh ki Manjari Ji Mahajan, Maniye Rashtrapati ke samaksh apna puraskar lene ke liye bade utsah aur garv ke sath aage badhti hui. Maniye Rashtrapati
1: Jay Prakash Rao, Andaman and Nicobar Islands.
2: Aur ab Andaman Nicobar Islands se aaye shikshak jo ki divyang hai, wo Maniye Rashtrapati ki aaye halke halke ichhadi ke dhare marte hue.
0: And he is receiving the award. What a proud moment it is indeed for J. Prakash Rao, the teacher from Andaman and Nicobar Islands. And this is indeed a very proud moment for all the teachers who are here at the
1: Kunda Jaivan Bachao, Maharashtra.
0: And Ms. Kunda Jaivan Bachao of Maharashtra is now receiving the National Teachers Award 2026 from the Honorable President of India.
1: Khushbu Kumari, Bihar.
2: Aur ab Bihar ki Khushbu Kumari Maniye Rashtrapati se apna ye samman grahan karte hue
1: Archana Shukla, Madhya Pradesh.
0: And from Madhya Pradesh, Ms. Archana Shukla, and she received this award from the Honorable Rashtrapati Ji for her work especially on innovation.
1: Renu Tripathi, Uttar Pradesh.
0: Ms. Renu Tripathi from Uttar Pradesh is Ghaziabad, and she is working for especially school dropouts, STEM and automation among
1: her students. Bhavani Bombelli, Telangana.
0: From Telangana, Ms. Bhavani Bompelli, and she focuses on innovation for pre-primary students. What a proud moment it is indeed.
1: Suman Goel, Delhi.
0: To receive the award from the Honorable Rashtrapati Ji, and now Ms. Suman Goel from Delhi, and she specializes on ICT and digital tools in education.
1: Umakant Nayak, Orissa.
2: Rashtrapati ke haathon samman prapt karte hue शिक्षकों के चेहरे पर एक प्रसन्नता स्पष्ट दिखाई दे रही है ये केवल एक पदक या प्रमाण नहीं ये उनके पूरे जीवन की मेहनत राष्ट्रीय स्तर पर पहचान
0: फ्रॉम पुदुचेरी मिस्टर गणेशन एस इज रिसीविंग द नेशनल टीचर्स अवार्ड 2026 फ्रॉम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
1: महादेव हनुमंत शिंदे गोवा
2: गोवा से महादेव हनुमंत शिंदे माननीय राष्ट्रपति से अपना सम्मान ग्रहण करते हुए
1: Wanglembam Govind Singh, Manipur.
0: And from the land of jewels, Manipur is Wanglembam Govind Singh.
1: Shiv Prasad Arvind Singare, Sainik School.
0: From Sainik School, Shiv Prasad Arvind Singare receives the National Teachers Award from the Honorable
1: Sangeeta
0: President.
1: Yadav, Central Board of Secondary Education.
2: CBSE ki Sangeeta Yadav, Maniye Rashtrapati ke aage. उपस्थित होकर अपना सम्मान ग्रहण कर रही है
1: मोहम्मद जफर आलम एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल
2: और अब श्री जफर आलम अपना पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं ये राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार माननीय
1: कोटि कोटि धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदय
0: एंड नाउ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इज बीन एस्कॉर्टेड टू द डेस अलोंग विद द Minister for Education, Shri Prahlad Joshi, and the Ministers of State for Education, Shri Jayant Chaudhary and Dr. Shukanta Majumdar, and the Secretary, Department of School Education and Literacy, the Secretary, Department of Higher Education, and the Secretary, Department of Skill Development and Entrepreneurship.
2: 24 शिक्षकों को माननीय राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया गया और अब माननीय राष्ट्रपति गणमान्य व्यक्तियों के साथ अपना स्थान ग्रहण करते हुए
3: महाराष्ट्र के कैच धारो रोड स्थित
0: निवासी
3: माध्यमिक
0: विद्यालय
3: नरसिंह राव गित्ते को 29 वर्षों से गन्ना श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का काम किया है बाल रक्षक और शिक्षण अपल्यादारी जैसे अभियानों से उन्होंने बच्चों तक शिक्षा पहुंचाई उन्होंने बच्चों को उच्च शिक्षा और बेहतर भविष्य की ओर बढ़ाया जिसके लिए डॉक्टर कविता नरसिंह राव गित्ते को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है

0: गुजरात के रंगपुर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में श्री नितिन कुमार महेंद्र कुमार पाठक ने सीमित संसाधनों वाले आदिवासी विद्यालय को डिजिटल एवं अनुभवात्मक शिक्षा के केंद्र में बदल दिया। उन्होंने 7D VR AR लैब और आर न्यूज जैसी सुविधाएं विकसित की। उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस एवं इसरो प्रशिक्षण में सफलता प्राप्त की। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: लद्दाख के कारगिल स्थित शासकीय मॉडल मिडिल स्कूल में मोहम्मद मुस्तफा कमाल ने सीमित संसाधनों के बीच बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान को अनुभव और स्थानीय जीवन से जोड़कर रोचक बनाया। 1000 से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित कर संदर्भ आधारित शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए मोहम्मद मुस्तफा कमाल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। केरलम के श्री सुनील कुमार केपी ने नवाचारी एवं आईसीटी सक्षम भाषा शिक्षण के माध्यम से मलयालम भाषा में पठन संचार एवं रचनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा दिया। विद्यार्थी मार्गदर्शन एवं समग्र विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए श्री सुनील कुमार केपी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: सुश्री याको तामे ने अरुणाचल प्रदेश के नाहरलागुन स्थित गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल जी सेक्टर में विशेषकर बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ा और एक जर्जर विद्यालय को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी साइंस और मैथमेटिक्स लेबोरेटरीज से सुसज्जित संस्थान में बदला। उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने स्टेट बोर्ड में शीर्ष स्थान हासिल किए, जिसके लिए सुश्री याको तामे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: आंध्र प्रदेश के श्री राजेश कोलुरी ने AI सक्षम FLN डिजिटल शिक्षा एवं ग्रामीण विद्यार्थियों के मार्गदर्शन में उल्लेखनीय योगदान दिया। राज क्लासरूम के माध्यम से डिजिटल शिक्षण को व्यापक बनाया तथा शिक्षकों की डिजिटल क्षमता वृद्धि में योगदान दिया। श्री राजेश कोलुरी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: श्री गबर सिंह बिष्ट ने उत्तराखंड के मेहरा स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मुस्या खांद में 35 वर्षों तक ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा दूरदर्शन उत्तराखंड के शैक्षिक मॉड्यूल से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दूर दराज के विद्यार्थियों तक पहुँचाई। उनके नवाचार ICT आधारित शिक्षण एवं समर्पित योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: असम के रंगिया स्थित PM श्री केंद्रीय विद्यालय NFR में डॉक्टर मनीषा खेत्रपाल ने समावेशी शिक्षा, बुनियादी साक्षरता और विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए निरंतर काम किया है। मास्टर ट्रेनर के रूप में उन्होंने असम के हजारों शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया, जिसके लिए डॉक्टर मनीषा खेत्रपाल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले के वार्ड नंबर 30 स्थित श्री रामकृष्ण शारदा विद्यापीठ प्राइमरी स्कूल में श्री पलाश चौधरी ने सुबह की भूख के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए सो का लोर पुष्टि पहल शुरू की, जिससे बच्चों की उपस्थिति और विद्यालय में नामांकन 3 गुना हुआ। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक सशक्तिकरण से जोड़ा, जिसके लिए श्री पलाश चौधरी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। बिहार के कुचाई कोटे स्थित मिडिल स्कूल कुचाई कोटे कन्या में सुश्री पुष्पा प्रसाद ने कम लागत वाली सामग्री, डिजिटल टूल्स और ग्रुप वर्क के जरिए विद्यार्थियों को सीखने के नए अवसर दिए। उन्होंने ड्रॉप आउट बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ा और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की भागीदारी बढ़ाई। उन्होंने प्लांटेशन, वाटर सेग्रीगेशन और प्लास्टिक फ्री स्कूल जैसे प्रयासों को भी बढ़ावा दिया। सुश्री पुष्पा प्रसाद को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। 18 वर्षों से शिक्षा के प्रति समर्पित सुश्री पूर्णिमा मोहनलाल पटेल ने दादरा एवं नगर हवेली के दलवाड़ा स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल में विज्ञान परियोजनाओं तथा शिक्षक प्रशिक्षण में योगदान देकर उन्होंने समावेशी शिक्षा, सामुदायिक सहभागिता और विद्यार्थियों के समग्र विकास को सशक्त किया। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सुश्री पूर्णिमा मोहनलाल पटेल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के

0: या जिले के जगदीशपुर स्थित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में श्री इफ्तिखार खान ने निःशुल्क रविवार कला कक्षाओं के माध्यम से रचनात्मक एवं अनुभवात्मक अधिगम को बढ़ावा दिया। उन्होंने कला के माध्यम से सड़क सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक जागरूकता को भी बढ़ावा दिया। कला शिक्षा, प्रतिभा संवर्धन एवं सामाजिक जागरूकता में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए श्री इफ्तिखार खान को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। कर्नाटक के होनेबेल स्थित गवर्नमेंट हायर प्राइमरी स्कूल समतगरु में सुश्री रत्ना कुमारी एस ने टॉय बेस्ड पेडागॉजी, अबैकस मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स के जरिए सीखने को आनंददायक और समावेशी बनाया। उनके मार्गदर्शन में ग्रामीण विद्यार्थियों ने प्रतिभा करंजी जैसे स्टेट कल्चरल प्लेटफॉर्म्स और इंस्पायर जैसे नेशनल साइंस प्लेटफॉर्म्स पर सफलता हासिल की, जिसके लिए सुश्री रत्ना कुमारी एस को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: जम्मू कश्मीर में डलहौरी के HSS डलहौरी में मोहम्मद अयाज रैना ने कंप्यूटर लैब से लेकर स्मार्ट बोर्ड और इंटरैक्टिव ई कंटेंट को शिक्षण का हिस्सा बनाया। शिक्षक विहीन विद्यालयों के विद्यार्थियों को ऑनलाइन बॉटनी शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित की। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए मोहम्मद अयाज रैना को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: रोहतक हरियाणा के राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांखी में श्री अनिल कौशिक ने गणित को रोचक और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 40 से अधिक शिक्षण मॉडलों से सुसज्जित मैथ्स लैब, इंटरैक्टिव हरबंस पजल और वर्चुअल मैथ्स लैब विकसित की, जिसके लिए श्री अनिल कौशिक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। त्रिपुरा के साबरूम स्थित पीएम श्री साबरूम गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में श्री रंजन देवनाथ ने स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपीरियंशियल प्रोजेक्ट्स और इको क्लब एक्टिविटीज के जरिए लर्निंग बाय डूइंग को बढ़ावा दिया। उनके मार्गदर्शन में ग्रामीण आदिवासी छात्राओं ने स्टेट बोर्ड में शीर्ष स्थान और चीफ मिनिस्टर्स एक्सलेंस अवार्ड हासिल किए, जिसके लिए श्री रंजन देवनाथ को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: उत्तर प्रदेश के कोयलहा स्थित कंपोजिट स्कूल रसूलाबाद में सुश्री शालिनी कुशवाहा ने कला आधारित गतिविधियों, डिजिटल संसाधनों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल्स के जरिए पढ़ाई को सहज और आनंदमय बनाया, जिससे विद्यालय को निपुण विद्यालय की पहचान मिली, जिसके लिए सुश्री शालिनी कुशवाहा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। तमिलनाडु के पुलियमपट्टी स्थित पंचायत यूनियन प्राइमरी स्कूल में श्री थंगाराज एम ने बच्चों के लिए शिक्षा को समावेशी, आनंददायक और उनके जीवन से जुड़ा बनाया है।

0: महाराज एन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। राजस्थान के जयपुर चाकसू स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालय तुमली का बास में डॉक्टर वर्तिका गुलाटी ने मूंगफली से बीज गणित और पतंगों से ज्यामिति समझाने के साथ प्रश्नों से विज्ञान पहल के जरिए रटने की जगह विद्यार्थियों में जिज्ञासा और खोज की भावना विकसित की। डॉक्टर वर्तिका गुलाटी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: श्री आर रोनल्ड मेरो ने नागालैंड के सिक्चू स्थित जीएचएसएस सिक्चू सुपसा में समुदाय संपर्क व्यक्तिगत मार्गदर्शन के जरिए बच्चों को विद्यालय से जोड़े रखा और ड्रॉप आउट कम है। आईसीटी आधारित शिक्षण के साथ शैक्षिक भ्रमण वाद विवाद और सांस्कृतिक गतिविधियों से उन्होंने सीखने को जीवन से जोड़ा। शिक्षा के प्रति उनके समर्पण के लिए श्री आर रोनल्ड मेरू को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के कंजवार स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय में श्री शैलेंद्र प्रताप सिंह ने जन भागीदारी एवं समावेशी शिक्षा के माध्यम से विद्यालय को सामुदायिक विकास का केंद्र बनाया। उनके प्रयासों से नामांकन 69 से बढ़कर 202, उपस्थिति 44% से बढ़कर 96% हुई और ड्रॉपआउट समाप्त हुए। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: श्री वैभव वसंत राव।

0: स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में खिलौनों कला और वास्तविक जीवन की समस्याओं के माध्यम से जटिल गणितीय अवधारणाओं को सरल और रोचक बनाया। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण गणितीय सामग्री देश भर के विद्यार्थियों तक पहुंचाई, जिसके लिए श्री वैभव वसंतराव कुलकर्णी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: असम के जनजातीय क्षेत्र में श्री राजेश बरदोलोई ने प्रथम पीढ़ी के मिशिंग जनजातीय विद्यार्थियों के लिए गतिविधि आधारित आईसीटी सक्षम एवं बहुभाषी शिक्षण को प्रभावी बनाया। उन्होंने सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों एवं दीक्षा ई कंटेंट के विकास में योगदान दिया। जनजातीय शिक्षा, बहुभाषी शिक्षण, डिजिटल सशक्तिकरण एवं सामाजिक नेतृत्व में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। सुश्री राधा राजेश ने माध्यमिक विज्ञान शिक्षा में नवाचारों एवं एआई सक्षम शिक्षण को प्रभावी बनाया। उन्होंने फील्ड आधारित अधिगम, प्रयोगात्मक गतिविधियों और जैव नैतिक चर्चाओं के माध्यम से जीव विज्ञान को अनुभवात्मक एवं जीवन केंद्रित बनाया। उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया तथा इसरो यूआरएससी नेशनल साइंस डे में 4 बार विजेता रहे। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
2: और अब हम माननीय राष्ट्रपति महोदया आपसे विनम्र विनती करते हैं कि
3: प्लेनरी हॉल में पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों के उत्कृष्ट कार्यों पर आधारित लघु वृत्त चित्र दिखाया गया। इन फिल्मों के माध्यम से हम जान पाए कि देश के विभिन्न हिस्सों में शिक्षक किस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में नए प्रयोग कर रहे हैं, कहीं तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं स्थानीय संसाधनों के माध्यम से इस प्रक्रिया को विकसित कर रहे हैं सीखने की, कई खेल
4: गतिविधियों को। राष्ट्रपति महाराष्ट्र नेशनल टीचर्स अवार्ड टू दी फर्स्ट अवार्डी इन दिस सेशन इज कविता नरसिंह राव गिट्टे फ्रॉम महाराष्ट्र एंड व्हाट अ प्राउड मोमेंट इट इज इंडीड फॉर
2: नितिन कुमार महेंद्र कुमार पाठक गुजरात
4: गुजरात नितिन कुमार महेंद्र कुमार पाठक एंड ही इज नोन फॉर हिज इनोवेशंस 7DBR लैब्स आईसीटी एंड चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस एंड
2: मोहम्मद मुस्तफा कमाल
4: पार्टिसिपेटेड इन इसरो कॉम्पिटिशन।
3: दूसरे चरण में अब माननीय राष्ट्रपति बाकी 24 शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान कर रही हैं।
4: मोहम्मद मुस्तफा कमाल ऑफ लद्दाख who is a social science teacher and he has trained 1,000 teachers. He is also a master trainer. And now from Keralam, Sunil Kumar KP, who has used Malayalam ICT and digital tools. And the next winner is from Arunachal Pradesh, Yakun Tame, who
2: Rajesh
4: has worked
2: Kaluri,
4: for bettering the infrastructure of the school. From Andhra Pradesh, Rajesh Koluri, who has used Raj classrooms and digital ICT tools
2: Gabar
4: for
2: Singh
4: education.
2: Bisht, Uttarakhand.
4: From Uttarakhand, Gabar Singh Bisht, who uses education and also is known for his Doordarshan education
2: Manisha
4: modules.
2: Manisha Khetrapal, Kendriya Vidyalaya Sangathan.
4: From Kendriya Vidyalaya Sangathan, Manisha Khetrapal, who is also a master trainer of teachers.
2: Palash Chaudhary, West Bengal.
4: From West Bengal, Palash Chaudhary. And he has worked on education and strengthening society, especially for his
2: Pushpa
4: food
2: Prasad,
4: for education.
3: और अब बिहार से Pushpa Prasad अपना पुरस्कार प्राप्त कर ले माननीय राष्ट्रपति के समक्ष पूरे उत्साह और
2: पटेल पूर्णिमा मोहनलाल दमन एंड दीव दादर एंड नगर हवेली
4: दमन दीव दादरा एंड नगर हवेली पूर्णिमा पटेल receives the award from the Honorable President
2: Dr.
4: of India.
2: Dr. Iftikhar Khan, Uttar Pradesh.
3: Uttar Pradesh se Dr. Iftikhar Khan apna puraskar praapt kar rahe hain. Mananiya Rashtrapati Shrimati Draupadi Murmu.
2: Ratna Kumari S, Karnataka.
4: From Karnataka, Ratna Kumari S, and she has used toy-based pedagogy for education
2: Mohammed
4: among
2: Ayaz
4: children.
2: Mohammed Ayaz Rehna, Jammu and Kashmir.
3: Aur ab Jammu and Kashmir se Mohammed एयाज रैना अपना पुरस्कार प्राप्त करने माननीय राष्ट्रपति के समक्ष
2: अनिल कौशिक हरियाणा
4: अनिल कौशिक ऑफ हरियाणा ही हैज 40 मॉडल्स इन हिज मैथमेटिक्स लैब एंड इज नाउ रिसीविंग द अवार्ड फ्रॉम द ऑनरेबल राष्ट्रपति
2: रंजन देवनाथ त्रिपुरा
3: और अब त्रिपुरा से श्री रंजन देवनाथ अपना पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं

0: तालियों के बीच सभी उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं।
1: शालिनी कुशवाहा, उत्तर प्रदेश।
0: उत्तर प्रदेश से शालिनी कुशवाहा को ये पुरस्कार दिया गया है उनके शिक्षा के क्षेत्र में अदम्य और अद्भुत कार्य के लिए। माननीय
1: थंगराज एम, तमिलनाडु।
2: फ्रॉम तमिलनाडु, थंगराज एम is receiving the award from the Honorable Rashtrapati ji, and he has worked extensively on enjoyable and relatable education.
1: Vartika Gulati, Rajasthan.
0: Rajasthan se Vartika Gulati, Maraniya Rashtrapati se, unhone namaskar kiya, jhukar Maraniya Rashtrapati ne abhivadan swikar kiya, aur ab Maraniya Rashtrapati se wo puraskar grahan kar rahi hai. शिक्षा के क्षेत्र में
1: आर रोनाल्ड मेरू, नागालैंड।
2: फ्रॉम नागालैंड आर रोनाल्ड मेरू विल बी रिसीविंग द अवार्ड फ्रॉम द ऑनरेबल राष्ट्रपति जी एंड ही हैज वर्क्ड एक्सटेंसिवली ऑन इंटरएक्टिव एजुकेशन। हियर ही विल रिसीव द
1: अवार्ड फ्रॉम शैलेंद्र प्रताप सिंह, मध्य प्रदेश।
2: प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम मध्य प्रदेश, शैलेंद्र प्रताप सिंह will receive the award, and he has worked to say that there is no dropout from his school,
1: Bebo,
2: and
1: Basant Rao Kulkarni, Navodaya Vidyalaya Samiti.
2: Larger enrollment has been there in his school. From Maharashtra, Vaibhav Vasant Rao Kulkarni, who has worked extensively on lively education, receives his award from the Honorable Rashtrapati
1: Rajesh
2: ji.
1: Badaloi, Assam.
0: Assam se Rajesh Badaloi apna puraskar grahan kar rahe hain. In sabhi shikshakon ne apne apne kshetra mein
1: राधा राजेश, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन।
0: सेकेंडरी एजुकेशन कर्नाटका से इस वक्त पुरस्कार प्राप्त कर रही राधा राकेश।
1: कोटि कोटि धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति
2: महोदय। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन श्री प्रहलाद जोशी, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन श्री जयंत चौधरी एंड द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन डॉक्टर सुकांत मजुमदार एंड द मिनिस्टर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी श्री टी के अनिल कुमार, the Secretary Department of Higher Education, Shrimati Deepthi Gaur Mukherjee, and the Secretary Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Dr. Devashish Mukherjee, have now taken their seats on the dais, and the Honorable President will also confer awards to teachers and to the institutes who have worked in higher education. And now,
3: architecture shiksha ko sustainable design aur real world learning se joda hai. Grameen kshetron se judkar ve vidyarthiyon ko awas, school avsanrachna ki vastavik chunautiyon ko samajhne ke liye prerit karti hai. Vastu kala shikshan ke liye professor Avlokita Agrawal ko rashtriya shikshak puraskar 2026 se sammanit kiya jata hai. तेलंगाना के हैदराबाद स्थित आईआईटी हैदराबाद में प्रोफेसर कीर्ति चंद्र साहू ने शोध, शिक्षण और अकादमिक नेतृत्व के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. विज्ञान और शोध को भविष्य की मौसम संबंधी चुनौतियों से जोड़ने और विद्यार्थियों को शोध के लिए प्रेरित करने के लिए प्रोफेसर कीर्ति चंद्र साहू को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है.
4: राजस्थान के पिलानी स्थित बिट्स पिलानी के डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डॉक्टर विनय चमोला ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में नए पाठ्यक्रम और हैंड्स ऑन आईओटी टिंकरिंग लैब्स के जरिए मेट सुपरविजन और एआईओटी ब्लॉक्स जैसे वेंचर्स के जरिए विद्यार्थियों को अपने विचारों को समाधान में बदलने के लिए प्रेरित किया. तकनीकी उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर विनय चमोला को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है. ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित आईआईटी भुवनेश्वर में डॉक्टर श्रीकांत गुल्लापुरी मेटलर्जी और मटेरियल साइंसेस की शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं. कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, रियल लाइफ एप्लीकेशंस और एक्सपीरियंशियल लर्निंग के जरिए वे विद्यार्थियों की तकनीकी समझ को मजबूत करते हैं. शिक्षा कौशल और सामाजिक जरूरतों से जुड़ी रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर श्रीकांत गुल्लापुरी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है. गुजरात के गांधीनगर स्थित आईआईटी गांधीनगर में विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच और नए समाधानों की क्षमता विकसित करने वाले शिक्षक हैं डॉक्टर मिथुन राधाकृष्ण. वे इंजीनियरिंग, साइंसेस और फाइनेंस जैसे अलग अलग क्षेत्रों की अवधारणाओं को जोड़कर विद्यार्थियों को नए और अनजाने सवालों पर सोचने के लिए प्रेरित करते हैं. मौलिक सोच और समस्या समाधान का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए डॉक्टर मिथुन राधाकृष्ण

0: राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित IISER भोपाल में प्रोफेसर सौरभ दत्ता ने प्लांट बायोलॉजी के शिक्षण, शोध और आउटरीच के जरिए विद्यार्थियों को नई सोच और शोध की दिशा दी है। वो एम्पैथेटिक मेंटोरशिप और इंक्लूसिव लर्निंग इकोसिस्टम के जरिए विद्यार्थियों को सशक्त करते हैं। शिक्षण, शोध और समाज के प्रति अपने योगदान के लिए प्रोफेसर सौरभ दत्ता को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मुंबई के IIT बॉम्बे के डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेज में प्रोफेसर विक्रम विशाल ने भू विज्ञान और जलवायु से जुड़े जटिल विषयों को शोध, प्रयोग और वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के जरिए समझने का नया तरीका विकसित किया। भारत की पहली कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज फील्ड लैबोरेटरी स्थापित की। भू विज्ञान और जलवायु समाधान में शिक्षा, शोध और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए प्रोफेसर विक्रम विशाल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। गुजरात के गांधीनगर स्थित नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जयराज सिंह सरवैया ने शिक्षा, शोध और उद्योग के बीच एक मजबूत सेतु तैयार किया है। उन्होंने फॉरेंसिक फार्मेसी, फूड फॉरेंसिक्स और मेडिकल डिवाइसेस जैसे तीन विशिष्ट क्षेत्रों में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शिक्षा, शोध और इनोवेशन को रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट से जोड़ने के लिए प्रोफेसर जयराज सिंह सरवैया को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के IIT कानपुर के डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में प्रोफेसर शंकर प्रसाद रथ ने रसायन विज्ञान में शोध, शिक्षण और विद्यार्थियों के मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके स्वयं NPTEL पाठ्यक्रम ने उच्च शिक्षा में उनकी विशेषज्ञता को व्यापक बनाया। विद्यार्थियों की प्रतिभा और करियर को संवारने के लिए प्रोफेसर शंकर प्रसाद रथ को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में डॉक्टर मनीषा निगम ने बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई को प्रयोग, समस्या समाधान और वास्तविक जीवन के उदाहरणों से अधिक प्रभावी बनाया। शिक्षा, शोध और सामाजिक सरोकारों को साथ लेकर चलने के लिए डॉक्टर मनीषा निगम को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। महाराष्ट्र के वर्धा स्थित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज DMIHER में डॉक्टर अमर मोहन राव तकसांडे ने बाल चिकित्सा शिक्षा, शोध और मरीजों की देखभाल में उत्कृष्ट योगदान दिया है। उन्होंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन और पीडियाट्रिक एकोकार्डियोग्राफी के माध्यम से चिकित्सा प्रशिक्षण को मजबूत किया। डॉक्टर अमर तकसांडे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। आंध्र प्रदेश के मंगलगिरी स्थित एम्स मंगलगिरी में डॉक्टर अरुण बाबू ने पीडियाट्रिक्स के शिक्षण, शोध और चिकित्सा शिक्षा में नवाचार को आगे बढ़ाया है। 400 से अधिक साइंटिफिक पब्लिकेशंस और अनेक रिसर्च प्रोजेक्ट्स के साथ चिकित्सा शिक्षा और नवाचार को सशक्त बनाने के लिए डॉक्टर अरुण बाबू को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मणिपुर के इम्फाल स्थित मणिपुर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ डांस एंड म्यूजिक में डॉक्टर पुखराम बम लीलावती देवी ने 15 वर्षों से अधिक समय में नृत्य, संगीत और शोध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मणिपुर स्टेट कला अकादमी के यंग टैलेंट अवार्ड और प्रसार भारती के मणिपुरी डांस में टॉप ग्रेड से सम्मानित डॉक्टर पुखराम बम लीलावती देवी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: वाराणसी की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में प्रोफेसर आशुतोष मोहन ने 25 वर्षों से अधिक समय में मैनेजमेंट शिक्षा, शोध और अकादमिक नेतृत्व में उल्लेखनीय योगदान दिया है। मार्केटिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में विशेषज्ञता के साथ उन्होंने 50 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए। प्रोफेसर आशुतोष मोहन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। असम के गुवाहाटी स्थित गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में प्रोफेसर अंकुरन दत्ता ने 2 दशकों से अधिक समय में शिक्षा, मीडिया और सामुदायिक संवाद को इसी सोच के साथ आगे बढ़ाया। नॉर्थ ईस्ट भारत के पहले कम्युनिटी और वेब रेडियो स्टेशन की स्थापना कर सामुदायिक संचार, स्थानीय ज्ञान और सांस्कृतिक जुड़ाव को सशक्त बनाने के लिए प्रोफेसर अंकुरन दत्ता को राष्ट्रीय शिक्षक

0: पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित कर्नाटका संस्कृत यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर शिवानी वी ने संस्कृत के पारंपरिक अध्ययन को आधुनिक तकनीक और शोध से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया। संस्कृत को आधुनिक, सुलभ और नई पीढ़ी के लिए प्रासंगिक बनाने के लिए प्रोफेसर शिवानी वी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर राजीव चौधरी ने फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में शिक्षण, शोध और विद्यार्थी कल्याण को नई दिशा दी है। डिजिटल पेडागोजी और अवेयर इंक्लूजन अफेक्शन AIA मॉडल के जरिए उन्होंने विद्यार्थियों में केवल याद करने की बजाय क्रिटिकल थिंकिंग और रिसर्च स्किल्स को विकसित किया। शिक्षा, शोध और विद्यार्थी कल्याण को सशक्त बनाने के लिए प्रोफेसर राजीव चौधरी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित MEI पॉलिटेक्निक में डॉक्टर विश्वनाथ एजिस पिछले 32 वर्षों से सिविल इंजीनियरिंग शिक्षा में इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिकल लर्निंग को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने मल्टीडिसिप्लिनरी नॉलेज, डिजिटल लर्निंग और स्टूडेंट सेंट्रिक टीचिंग को बढ़ावा दिया। तकनीक आधारित और रोजगार से जुड़ी शिक्षा को मजबूत करने के लिए डॉक्टर विश्वनाथ एजिस को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। तमिलनाडु के कोयंबटूर स्थित PSG पॉलिटेक्निक कॉलेज में डॉक्टर शशि कलायस डिप्लोमा इंजीनियरिंग एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए इंडस्ट्री कोलैबोरेशन और आउटकम बेस्ड लर्निंग को आगे बढ़ा रही है। 110 से अधिक इंडस्ट्री अलाइंड एक्सपेरिमेंट्स और 11 इंडस्ट्री MOUs के जरिए उन्होंने विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल लर्निंग के अवसर दिए। विद्यार्थियों के कौशल और अवसरों को बढ़ाने के लिए डॉक्टर शशि कलायस को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। तमिलनाडु के इरोड स्थित शक्ति पॉलिटेक्निक कॉलेज में डॉक्टर कन्नन रथिनम ने पॉलिटेक्निक शिक्षा में सीखने का एक व्यावहारिक मॉडल विकसित किया। उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप सैद्धांतिक अवधारणाओं को पीयर लर्निंग के माध्यम से समझने योग्य बनाया। पॉलिटेक्निक शिक्षा में नवाचार, शोध और अनुभवात्मक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर कन्नन रत्नम को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। महाराष्ट्र के सोलापुर स्थित गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में डॉक्टर संदीपन प्रल्हाद नारोटे ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और टेलीकम्युनिकेशंस की शिक्षा को टेक्नोलॉजी इनेबल्ड और एक्सपीरियंशियल लर्निंग से मजबूत किया है। उनकी टीचिंग लर्निंग अप्रोच से 5000 से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिला है। शिक्षण, शोध और संस्थागत विकास में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉक्टर संदीपन प्रल्हाद नारोटे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। केरल के ITI अरिकोड में श्री हरीश ए ने इलेक्ट्रिकल स्किल्स ट्रेनिंग को नवाचार और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ा है। उनकी सबसे खास पहल कैंडेला LED बल्ब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसे उन्होंने ITI विद्यार्थियों के साथ स्थापित कर स्किल लर्निंग को वास्तविक उत्पादन और एंटरप्रेन्योरशिप से जोड़ा और उद्यमिता के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए श्री हरीश ए को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के मंडी स्थित गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में फिटर ट्रेड के इंस्ट्रक्टर श्री जगमोहन ने कौशल प्रशिक्षण को गुणवत्ता, उद्योग की जरूरतों और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ा है। COVID-19 के दौरान मास्टर ट्रेनर के रूप में उन्होंने ट्रेनीज को ऑक्सीजन प्लांट्स के संचालन का प्रशिक्षण देकर कौशल को एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवा से भी जोड़ा। श्री जगमोहन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। महाराष्ट्र के धाराशिव स्थित गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में श्री किरण प्रकाश झरकर ने कौशल प्रशिक्षण को पुस्तकों, डिजिटल प्लेटफॉर्म और व्यावहारिक संसाधनों के एक जुड़े हुए लर्निंग इकोसिस्टम में बदला है। उनकी पेटेंट प्राप्त स्किल बुक कनेक्टिंग ट्रेनीज टू स्किल्स और स्किल बुक मोबाइल एप्लीकेशन ने प्रैक्टिकल लर्निंग और एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड रिसोर्सेज से जोड़ा, जिसके लिए श्री किरण प्रकाश झरकर को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित गवर्नमेंट ITI टॉलीगंज में वेल्डर ट्रेड के इंस्ट्रक्टर श्री संदीप बनर्जी ने कौशल प्रशिक्षण को आधुनिक तकनीक और व्यावहारिक सीखने से जोड़ा है। 300 से अधिक ट्रेनीज को कॉम्पिटेंसी बेस्ड और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देने के साथ उन्होंने नए वेल्डर इंस्ट्रक्टर्स के लिए मास्टर ट्रेनर के रूप में भी योगदान दिया है। युवाओं को सशक्त बनाने के लिए श्री संदीप बनर्जी को

0: इंस्ट्रक्टर श्री हीरालाल शर्मा ने उनके विकसित किए गए स्प्लिट एसी और डीप फ्रीजर फॉल्ट सिमुलेटर्स के जरिए विद्यार्थी तकनीकी खराबियों की पहचान और ट्रबल शूटिंग का व्यवहारिक अभ्यास करते हैं, जिसके लिए श्री हीरालाल शर्मा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: महाराष्ट्र के नासिक स्थित गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट त्रिंबकेश्वर आदिवासी में फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी की क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर श्रीमती अर्चना राकेश जाधव ने आदिवासी और ग्रामीण युवाओं को फैशन और अपैरल स्किल्स के माध्यम से रोजगार और उद्यमिता से जोड़ा है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए श्रीमती अर्चना राकेश जाधव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित गवर्नमेंट डिविजनल आईटीआई में COPA HIVI की ट्रेनिंग ऑफिसर श्रीमती रीना गुप्ता ने प्रैक्टिकल लर्निंग के माध्यम से वे विद्यार्थियों को कंप्यूटर ऑपरेशन और बेसिक प्रोग्रामिंग जैसे कौशलों में प्रशिक्षित करती हैं। दिव्यांग युवाओं को डिजिटल कौशल और आत्मनिर्भरता से सशक्त बनाने के लिए श्रीमती रीना गुप्ता को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित गवर्नमेंट आईटीआई टॉलीगंज में श्री सौमेन पंडित ने नई तकनीकों के कौशल प्रशिक्षण को प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री ओरिएंटेड लर्निंग से जोड़ा है। उन्होंने 160 से अधिक लर्नर्स को ड्रोन टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षित किया। नई तकनीकों और भविष्य के रोजगार के अवसरों से युवाओं को जोड़ने के लिए श्री सौमेन पंडित को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। असम के नॉर्थ ईस्ट स्किल्स सेंटर असम स्किल डेवलपमेंट मिशन में श्रीमती तुलिका कलिता ने अपने 20 वर्षों के अनुभव से युवाओं को वैश्विक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए तैयार किया है। उन्होंने 1400 से अधिक लर्नर्स को वर्क प्लेस रेडिनेस कम्युनिकेशन एटिकेट और प्रोफेशनल सर्विस स्किल्स से प्रशिक्षित किया, जिसके लिए श्रीमती तुलिका कलिता को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। पंजाब के लुधियाना स्थित नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मशीनिस्ट ट्रेड के ट्रेनिंग ऑफिसर श्री संजय कुमार ने प्रिसिशन मशीनिंग और एडवांस्ड टेक्निकल स्किल्स के माध्यम से युवाओं को उच्च स्तरीय करियर के लिए तैयार किया है। उनके विद्यार्थी DRDO, इसरो, बार और इंडियन रेलवेज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों तक पहुंचे हैं। श्री संजय कुमार को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विमेन में ट्रेनिंग ऑफिसर श्रीमती ज्योति बाला राठौर ने उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय परीक्षाओं और स्किल कॉम्पिटिशन में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। कौशल और रोजगार के अवसरों के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने के लिए श्रीमती ज्योति बाला राठौर को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: उड़ीसा के भुवनेश्वर स्थित सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर में इंजीनियर ट्रेनिंग श्री प्रणब कुमार चौधरी ने कौशल विकास को बड़े स्तर पर प्रशिक्षण, गुणवत्ता और इंडस्ट्री रेडी लर्निंग से जोड़ा है। उन्होंने स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप व्यापक स्तर तक पहुंचाया। कौशल, गुणवत्ता और रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण को व्यापक स्तर पर सशक्त बनाने के लिए श्री प्रणब कुमार चौधरी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
2: ये और शिक्षा
3: माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू शिक्षक दिवस 2026 के अवसर पर उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के शिक्षकों या संकाय सदस्यों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। माननीय राष्ट्रपति अब अपने स्थान से खड़े होकर पुरस्कार देने के लिए आगे आते हुए आपको बता दें, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आमंत्रित किए गए थे, जिनमें जन भागीदारी के तहत इसमें
2: प्रोफेसर अवलोकिता अग्रवाल आईआईटी रुड़की की
3: प्रोफेसर अग्रवाल अपना पुरस्कार ग्रहण करने माननीय राष्ट्रपति के सामने आ रही हैं। इन्होंने सतत वास्तुकला और निर्मित पर्यावरण के क्षेत्र में
4: फ्रॉम आईआईटी हैदराबाद प्रोफेसर कीर्ति चंद्र साहू and he works on chemical engineering and has trained many students.
5: Dr. Vinay Chemola.
3: Or Professor

0: जानी।
1: विनय चमोला जिन्होंने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम किया है, बीएससी प्लानिंग से।
0: डॉक्टर श्रीकांत गोलापुरी, आईआईटी भुवनेश्वर।
2: फ्रॉम आईआईटी भुवनेश्वर, डॉक्टर श्रीकांत गोलापुरी हु वर्क्स इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग।
0: डॉक्टर मिथुन राधाकृष्ण, आईआईटी गांधीनगर।
1: डॉक्टर मिथुन राधाकृष्ण जो कि केमिकल इंजीनियर है, इस क्षेत्र में इनको पुरस्कार दिया जा रहा है आईआईटी।
0: प्रोफेसर सौरभ दत्ता, आईआईएसईआर भोपाल।
2: From IISER Bhopal, Professor Saurav Datta receives the award from Honorable Rashtrapati.
0: Professor Vikram Vishal, IIT Bombay.
1: पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में कार्य के लिए प्रोफेसर विक्रम विशाल को पुरस्कार दिया जा रहा है, बॉम्बे महाराष्ट्र से है।
0: डॉक्टर जयराज सिंह सरवैया, NFSU गांधीनगर।
2: For his work in forensic sciences, Dr. Jairaj Sarvaiya of the National Forensic Science Laboratory, University Gujarat.
0: Professor Shankar Prasad Rath, IIT Kanpur.
1: रासायनिक विज्ञान क्षेत्र के लिए प्रोफेसर शंकर प्रसाद रथ को पुरस्कार दिया जा रहा है जो IIT कानपुर उत्तर प्रदेश से है।
0: डॉक्टर मनीषा निगम, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड।
2: हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी उत्तराखंड रिसीव्स हर अवार्ड इन द फील्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री फ्रॉम द
0: डॉक्टर अमर मोहन राव।
1: अगला पुरस्कार डॉक्टर अमर मोहन राव को दिया जा रहा है, मेडिसिन के क्षेत्र में बाल रोग के लिए उन्होंने कार्य किया है, वर्धा महाराष्ट्र से।
0: डॉक्टर अरुण बाबू, एम्स मंगलागिरी आंध्र प्रदेश।
2: फ्रॉम आंध्र प्रदेश इज मंगलागिरी एम्स, डॉक्टर अरुण बाबू, ही हैज वर्क्ड especially on pediatric treatment and innovation and has
0: Manipur University
2: published 400 scientific publications. Dr. P. Lilavati Devi receives her award from the Honorable President for her work on Manipuri Gans.
0: Professor Ashutosh Mohan, BHU Varanasi.
1: Professor Ashutosh Mohan को जो कि प्रबंध अध्ययन संस्थान बनारस से है, उनको पुरस्कार दिया जा रहा है।
0: Professor Ankuran Datta, Guwahati University, Guwahati.
2: Dr. Anukaran Datta of the Guwahati's Public Relations
0: Professor
2: and Communication
0: Shivani
2: received
0: v,
2: the award from the Honorable
0: University,
2: President
0: Bangalore.
2: Of India.
1: सुश्री शिवानी वी कर्नाटका यूनिवर्सिटी बेंगलोर से हैं, इनको संस्कृत विश्वविद्यालय से।
0: प्रोफेसर राजीव चौधरी, पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी रायपुर।
2: प्रोफेसर राजीव चौधरी रिसीव्स द अवार्ड फॉर हिज वर्क ऑन फिजिकल एजुकेशन एंड इज फ्रॉम द पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी रायपुर।
1: सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में डॉक्टर विश्वनाथ HS को पुरस्कृत किया जा रहा है, बेंगलोर कर्नाटका से।
0: डॉक्टर शशिकला S, PST Polytechnic College, Coimbatore.
2: From Tamil Nadu's Coimbatore, Dr. Sashikala S receives the award for her work in electronics
0: Kanan
2: and electrical engineering.
1: भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर कनन शक्ति रथिनम को पुरस्कृत किया जा रहा है, इरोड तमिलनाडु।
0: डॉक्टर संदीपन प्रहलाद नरोटे, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सोलापुर।
2: From Maharashtra, Solapur district, the Government Polytechnic, Dr. Sandeep Narote of the Electronics and Engineering Department received the award from the Honorable President of
0: Dr.
2: India.
0: Dr. Harish A, Government
2: IIT, Skilling and Entrepreneurship,
0: Kozhikode, Kerala.
2: Harish A of ITI Kerala receives the award from the Honorable President of India.
0: Chak Mohan, Government Industrial Training Institute, Mandi, Himachal Pradesh.
2: He specializes in fitter trade and also is a master trainer, Sri Jagmohan from IIT Himachal Pradesh.
0: By Uddhav Rao Patil, Government Industrial Training Institute, Dharashiv, Maharashtra. Sandeep Banerjee, Government ITI, Taliganj.
2: Receives the award
0: Patel,
2: from the Honorable
0: Rajesh
2: President.
0: Bhai, Magan Bhai, Government ITI, Bilimora.
1: उद्यमशीलता के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं माननीय राष्ट्रपति
0: हीरा लाल शर्मा, गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चोमू।
2: एंड ही हैज वर्क्ड इन द फील्ड ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड हिज स्पेशल
0: अर्चना राकेश
2: यादव,
0: गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आदिवासी, त्र्यंबकेश्वर, नासिक।
2: And she works on fashion design.
0: Reena Gupta, Government Industrial Training Institute, Ujjain.
2: Dr. Gupta's work is on Divyang's digital skilling.
0: Soumen Pandit, Taliganj, Government ITI.
2: Soumen Pandit specializes in industry-oriented

0: Integrated Learning and Drone Technology.
1: Tulika Kalita, North East Skill Center, Guwahati, Assam.
0: She has trained 1,400 workplace readiness workers.
1: Sanjay Kumar,
2: Kaushal Vikas aur
1: TI Ludhiana
2: Kshetra mein ye puraskar pradan kiye ja rahe hain mananiya rashtrapati ji.
1: Jyoti Bala Rathor, NSTIW Indore.
0: She works on skilling and empowerment of her students from
1: Sri Lanka. Pranab Kumar Chaudhary, Central Tool Indore. Room and Training Center, Bhubaneswar.
0: Pranab Kumar Chaudhary also specializes on skilling and entrepreneurship. And what a proud moment it is indeed
1: to
0: receive the award from the Honorable President of India. And the Honorable President of India has been escorted to her guest, and she is accompanied by the Minister for Education, Sri Pralhad Joshi, and the Ministers of State for Education, Sri Jayant Chaudhary and Sri Sukanta Majumdar, and the Secretaries in the Department of Education, Literacy, School Education and Literacy, and Skill Development and Entrepreneurship, and the Secretary Department of Higher Education.
2: और अब समय आ गया है जब माननीय राष्ट्रपति ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी शिक्षकों को संबोधित करेंगी. राष्ट्रपति का संबोधन शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लाखों शिक्षकों के लिए प्रेरणादायी संदेश होगा. श्रोताओं, सभी शिक्षकों ने तालियों के साथ माननीय राष्ट्रपति
0: का स्टैंडिंग ओवेशन फॉर द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू. नाउ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट विल एड्रेस द गैदरिंग.
3: इस समारोह में उपस्थित केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी, राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी जी एवं डॉक्टर सुकांत मजूमदार जी, मंचासीन सभी सचिवगण, सभी शिक्षकगण, देवियों और सज्जन सभी को नमस्कार. राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित आज के सभी पुरस्कार विजेताओं को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ. देश के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर हमारे देशवासी उनके प्रति एवं समस्त शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं. जो समाज शिक्षकों का सम्मान करता है वो समाज सही अर्थ में प्रगतिशील होता है. शिक्षक के बीच आकर मेरे अंदर विद्यमान विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही जीवंत हो जाता है. मुझे अपने शिक्षकों का सादर स्मरण होता है. उनके स्नेह और मार्गदर्शन के बल पर ही मैं अपने जीवन यात्रा में आगे आकर आपके सामने खड़ी हूँ. साथ ही मुझे अपने विद्यार्थी भी याद आते हैं जिन्हें मैंने ओडिशा के रायरंगपुर में स्थित श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में पढ़ाया था. मैंने अपने विद्यार्थियों से भी बहुत कुछ सीखा है. उन विद्यार्थियों के प्यार को मैं अपने जीवन के बहुत बड़ी उपलब्धियां मानती हूँ. मैं भी कभी शिक्षक समुदाय की सदस्य रही हूँ. इससे मुझे विशेष सार्थकता का अनुभव होता है. देवियों और स्वजनों, सावित्रीबाई फुले आधुनिक युग में विद्यालय में पढ़ाने वाले भारत की पहली शिक्षिका के रूप में जाने जाती है. बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्रांतिकारी पहल की थी और 19वीं सदी में बालिका विद्यार्थियों की स्थापना की थी, विद्यालय की स्थापना की थी. आज के दिन क्रांति ज्योति स्वरूपा महान शिक्षिका सावित्री बाई फुले की स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ. 20वीं सदी के आरंभ में पश्चिम बंगाल के बोलपुर जिले में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की

तथा ओडिशा के पुरी जिले में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास ने वन विद्यालय यानी ओपन एयर स्कूल की स्थापना की थी। उन विद्यालयों की स्थापना के पीछे ये उदात्त विचार था कि प्रकृति की गोद में विद्यार्थियों का सहज विकास होता है। देश को बहुआयामी योगदान देने वाले यथा सर्वजनात्मक शिक्षा के प्रति विशेष रूप से समर्पित उन विभूतियों को मैं सादर नमन करती हूँ। इस सभागार में लद्दाख से लेकर अंडमान निकोबार आइलैंड तक तथा अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक पूरे देश में शिक्षण के श्रेष्ठ प्रतिमान स्थापित करने वाले शिक्षक उपस्थित है। ये प्रसन्नता की बात है कि पुरस्कार विजेता में गांव के स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या अधिक है। मुझे आशा है कि इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं की अध्यापन एवं प्रशिक्षण पद्धतियां और उपलब्धियां उन शिक्षकों को भी शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए प्रेरित करेगी। पुरस्कार विजेताओं के योगदान और उपलब्धियां पर केंद्रित फिल्मों को देखकर मेरा ये विश्वास और भी दृढ़ हुआ है कि निष्ठावान शिक्षक अग्रिम पंक्ति के राष्ट्र निर्माता होते हैं। आज पुरस्कृत सभी शिक्षकों के समान रूप से प्रभावशाली और अनुकूलनीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, लेकिन समय के सीमा के कारण मैं केवल एक उदाहरण का उल्लेख करना चाहूंगी। हम सब ने देखा कि राजस्थान के झालावाड़ जिले के एक गांव के स्कूलों में अपने शिक्षक के मार्गदर्शन में बच्चे अत्यंत आधुनिक माध्यमों के सहायता से जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि सोच के बल पर छोटे से छोटे स्थान पर प्रबुद्ध शिक्षक और जिज्ञासु विद्यार्थी उच्च स्तरीय पाठन पठन का आधुनिक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता होती है कि ये सभागार में उपस्थित शिक्षकों ने ऐसे प्रेरक प्रयासों से शिक्षण कार्यों को नए आयाम दिए हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्कूलों, उच्च शिक्षण संस्थानों एवं पॉलिटेक्निक्स में अध्यापन करने वाले श्रेष्ठ शिक्षकों तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा चुने गए सुयोग्य प्रशिक्षकों के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है। देश के विकास में एकेडमिक एक्सेलेंस, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत अधिक महत्व है। भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने के साथ साथ स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित करना हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता में से शामिल है। यहाँ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कृत आचार्यगण उपस्थित है। उनके लिए तथा पूरे देश के आचार्यों के लिए उच्च शिक्षा में भारत का गौरवशाली इतिहास लक्ष्य भी प्रस्तुत करना है और कसौटी भी। हुएंगसान ने लिखा है कि नालंदा विक्रमशिला में पढ़ाने वाले आचार्यों का यश दूर दूर के देशों तक फैल चुका था। उनका चरित्र पूर्णतः निर्मल और अनिंदनीय था। आचार्यगण जानते थे कि समुद्रों और पर्वतों के को पार करके अनेक कष्ट सहन करके विदेशों के छात्र अनेक उनके पास आते थे और ज्ञान पिपासा लेकर वो अपने आप को संतुष्ट लाभ करते थे। भारत के विश्वविख्यात आचार्यों की परंपरा को नोबेल पुरस्कार विजेता आचार्य सी वी रमन जैसे शिक्षकों ने आधुनिक युग में आगे बढ़ाया है। वे अपने विद्यार्थियों के साथ खूब घुल मिलकर मॉडर्न फिजिक्स के विभिन्न विषयों पर चर्चा करते थे। जो विद्यार्थी उनसे कोई अच्छा प्रश्न करते थे तो वे पुस्तकों से हटकर अपने विलक्षण अध्यापन से ऐसे जिज्ञासा जागृत करते थे कि उनके विद्यार्थी उन प्रश्नों के माध्यम से विश्व के महान वैज्ञानिकों के मूल ग्रंथों में अवगहन करने जानते थे। देवी और सज्जनों,

0: भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि बच्चों की देखभाल करना, पौधों को जोर से सींचने जैसे बराबर है। स्कूल एजुकेशन शिक्षा व्यवस्था का आधार है। ज्ञान और कौशल तो कभी भी प्राप्त किया जा सकता है, परंतु बचपन में ही सदाचार की शिक्षा देना अधिक प्रभावी सिद्ध होता है। आरंभिक कक्षाओं में बच्चों के बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक विकास पर निष्ठापूर्वक ध्यान देकर हमारे शिक्षक अच्छे विद्यार्थियों और कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों की भावी पीढ़ियां तैयार करते हैं। विद्यार्थियों ही शिक्षकों की पहचान होते हैं। विद्यार्थी अपने शिक्षकों द्वारा पढ़ाया गया पाठ्यक्रमों भले ही भूल जाए, लेकिन उनके व्यवहार को ये सदैव याद रखते हैं। अनेक विद्यार्थी आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिसरों से आते हैं। कुछ अनेक परिवार में पहली पीढ़ी के विद्यार्थी होते हैं। कुछ विद्यार्थी गांव के किसी सामान्य स्कूल से शहर के बड़े स्कूल में आते हैं और थोड़ा असहज हो जाते हैं। कुछ विद्यार्थी स्वभाव से ही संकुचित होते हैं। कुछ विद्यार्थी में बहुत प्रतिभा होती है, लेकिन उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है तथा कुछ विद्यार्थियों को चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे सभी विद्यार्थी जो किसी कारण से कोई भी कमी महसूस करते हैं, उनमें आत्मविश्वास जगाना और उन्हें आगे बढ़ाना शिक्षकों का विशेष दायित्व होना चाहिए। संस्कृत भाषा के शब्द उद्धार का अर्थ होता है खींचकर बाहर निकालना या नीचे से ऊपर ले जाना। विद्यार्थियों का उद्धार करने का पुनीत अवसर केवल शिक्षकों को ही उपलब्ध होता है। हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्श को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। हमारे देश में प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट 12 वर्ष पहले लगभग 4.5% था। अब ये ड्रॉप आउट रेट नहीं के बराबर है। ये उपलब्धि शिक्षकों के प्रयासों से संभव हो सकी है। इस राष्ट्रीय सफलता के लिए मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित ना हो। मैं चाहूंगी कि हमारे शिक्षक अपने स्नेह और समर्पण से सभी विद्यार्थियों में ज्ञान, प्रेरणा, नैतिकता और संवेदनशीलता का संचार करें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।
1: अपने संबोधन में शिक्षा और शिक्षा की भूमिका के महत्व को रेखांकित किया माननीय राष्ट्रपति।
2: माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो कार्यक्रम का समापन किया जाए।
1: और अब राष्ट्रगान
3: से निवेदन है, राष्ट्रगीत तथा राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

0: इतना डिफरेंस क्यों होता है? और ये प्रॉब्लम होने से किस तरीके से गवर्नमेंट मतलब किसान का आय दुगना होगा? क्योंकि इससे मेरा एक ओपिनियन भी इसमें है कि गवर्नमेंट इसमें जो रेल ट्रांसपोर्ट का एक सिस्टम बनाया जाए जिससे कॉस्ट भी कम हो और एक राज्य से दूसरे राज्य में किसान भी आसान से लेके आ पाए, इससे किसान का जो मेहनत किया हुआ जो फल है ना उसको ऑटोमेटिकली उसको खुद का मेहनत से मिल जाए, ना कि गवर्नमेंट को एवरी ईयर में उसको 10,000, 6,000, 8,000, 10,000 देने से अच्छा उसको एक रास्ता दिया जाए।
1: परिमल जी बहुत अच्छा सवाल है और ये बहुत ही चर्चा का विषय रहा है पिछले कई सालों में, आपने ठीक कहा। देखिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं किसानों की आय बढ़ाने के लिए, सरकार प्रतिबद्ध है, बहुत से राज्यों में बढ़ी भी है और किसान सम्मान निधि जो इंट्रोड्यूस किया गया वो भी इसीलिए किया गया। आपका जो एक सवाल का हिस्सा है वो बहुत ही काम का है और मैं भी अक्सर इसको कहता हूं कि किसान कम कीमत लेकर परेशान होता है और ग्राहक जो है वो महंगी कीमत लेकर परेशान होते हैं। तो बीच में जो तंत्र है, बीच में पूरा सिस्टम है, और मैं राजेश और निखिल की भी इसमें इजाजत चाहूंगा कि बीच में जो तंत्र है, जो बिचौलिए हैं इसमें परिमल, वो कहीं लाभ उठा जाते हैं। तो मुझे लगता है किसानों को सीधा हमें एपीएमसी से जोड़ना और मंडी समितियों को और ज्यादा स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, जिससे बीच में जो आड़ती हैं, जो बीच में जो लोग हैं जो मुनाफा बीच में कमाते हैं, रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, स्टॉकिस्ट हैं, कमीशन एजेंट्स हैं।

0: इतनी लंबी परिमल बीच में चेंज है कि वो 3 रुपए की चीज 25-30 रुपए की ग्राहक के हाथ तक पहुंचती पहुंचती हो जाती है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि किसान को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिलना चाहिए। तो मुझे लग रहा है जैसे जैसे इन बिचौलियों को, और सरकार जब किसान के संबंधित बिल लेकर आई थी तो सरकार की मंशा रही थी यही थी, दुर्भाग्यपूर्ण वो बिल पास नहीं हो पाए, पर अगर वो बिल पास होते तो शायद आज हम कुछ और परिस्थिति देख रहे होते। पर सरकार मुझे लगता है प्रतिबद्ध है किसानों की आय बढ़ाने के लिए। और किसानों को भी मैं सलाह देना चाहूंगा परिमल, आप भी किसानों को बोलिए कि कोशिश करें कि बिचौलियों के ज्यादा वो उसमें घेरे में ना आए और सीधा मंडी समिति तक या सीधा जहां पर उसको एक्चुअल रिटेल होता है वहां तक, जितने बिचौलियों की चेन कम होगी मुझे लगता है उतना किसान का मुनाफा हो सकता है।
1: फ्रॉम बेंगलुरु वी आर जॉइंड इन बाय एनआर प्रसाद, अ वार्म वेलकम मिस्टर प्रसाद।
2: हाय, गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा, दिस इज एनआर प्रसाद फ्रॉम बेंगलोर। गुड इवनिंग राजेश जी, हेलो निखिल,
1: हेलो
2: तरुण जी, गुड इवनिंग सर।
0: गुड इवनिंग,
2: just one question but it has got a two subdivision questions.
0: Yeah.
2: Sir, I hold a large, mid and a small cap, sir.
0: Yeah.
2: Whenever I book the profit, there are two things here.
0: Yeah.
2: What is the percentage to be sold and what is the percentage of profit to be made? In turn, generally what I do when I do the profit booking, minimum of I beat the inflation of 5-6%. And another 8-10, 12-14, whatever the available on that day. So that is the percentage of profit I book. How much to sell? That percentage of how much to sell, if it is a large cap or if it is a small cap. How much to hold and how much to sell? These are my two sub-questions, sir.
0: Well, I got your question, Mr. Prasad. It's a very subjective question because I need to, because we don't name here the, you know, the large cap and mid cap funds which you're holding. So unless we know the name, it's very hard for me to predict that how much more you're going to make profit on this. That's a $1 billion question, that where do you stand today? How long have you been holding? But I would suggest that, you know, I follow a principle called profit in the bank is better than profit in the books. So if you are getting a decent amount of profit, I would suggest you should book, because the markets, the way they have been behaving over the last couple of years, it's been a roller coaster ride. And I was looking at the Nifty returns, you know, over the last 2 years, literally Nifty has not given any returns, if I talk of the 50 bunch of Nifty. So I think if you are getting, Mr. Prasad, a decent amount of profit, I would advise you to book maximum of that, because the geopolitical situation, Mr. Prasad, and the geo-economic situation at this point of time is very, very fragile. And the way things are going in West Asia, the way things are going, you know, in terms of Strait of Hormuz, crude oil prices, things are looking very, very uncertain. So booking a little more profit than what you actually do would not be a bad idea. However, I would like to qualify my answer here that a very specific can only be made out after I know the names of funds, which we don't do here. So therefore, but a general opinion which I personally believe in is that try and book profit. Units installation stage par hai, apne gestation period mein hai. Jaise hi units install ho jayenge aur ek do saal ke andar functional ho jayenge, aapko sare units saman bechte hue dikhenge. To I think I call this, Amit, as work in progress. Us paristhiti se so hum aaj bahut acche hain, jab hamare yahan semiconductor banane ka to chhodiye, hamari itni production yahan shuru nahi hui hai, par aapko main ek aashwasan de sakta hu ki Bharat semiconductor mein bahut aage jane wala hai, aur hum na keval apni gharelu zaruratein isse puri karenge balki hum duniya ke liye bahut bade exporter nikal ke aayenge. Amit, ye dhyan rakhna chahiye, aakhri baat main bol raha hu ki semiconductor ka jo plant hota hai jisko chip hum bolte hain, usko setup karna ek bahut complicated process hai, bahut capital intensive process hai. To समय लगता है, सहज पके सो मीठा होए, किसी ने कहावत बोली है. तो मुझे लगता है आप एक आध साल और इंतजार करिए, अगले साल इसी समय इस प्रश्न को फिर करिएगा, तब इस परिस्थिति का हम आकलन करके और आपको स्वयं जवाब मिल जाएगा. जी,
1: फ्रॉम दिल्ली वी आर जॉइंड इन बाय कैप्टन जगमल, अ वार्म वेलकम.
0: सर, कैप्टन साहब.
3: सर, मैंने 2-3 हफ्ते पहले भी ये सवाल पूछा था, लेकिन वो सेलिंग प्राइस और परचेज प्राइस है
0: जी,
3: उसका डिफरेंस मिलेगा.
0: जी जी जी,
3: जो कभी कहीं 80 लाख के करीब लॉस बन था, वो करीब 8 लाख के करीब वो कंप्यूटर एक्सेप्ट कर रहा है उसमें.
0: जी जी जी.
3: अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैंने जुलाई में रिटर्न भरी थी
0: जी.
3: उसके साथ जो मेरी फैमिली की बाकी रिटर्न भरी थी, उनका सबका वो आ गया फाइनल.

0: पर रिफंड भी आ गया
1: जी,
0: ये जब से अब से उन्होंने होल्ड की हुई है
1: जी जी
0: उसमें भी।
1: चलिए कैप्टन साहब, आपने जो बात करी ये आप ये जिस का जिक्र कर रहे हैं निखिल राजेश, ये ग्रैंड फादरिंग पोजिशन प्रोविजन लाए थे क्योंकि एक डेट से ही जो जब से 12.5% किया टैक्स पेयर को ऑप्शन दी गई पुरानी प्रॉपर्टीज पे आप इंडेक्सेशन लेके या विदाउट इंडेक्सेशन लेके आप कर सकते हैं, तो इसीलिए वो लॉस को ऐसे ले रहा है क्योंकि प्रॉफिट में क्या है कि कैप्टन साहब वो आपको दो ऑप्शंस देता है कि आप इंडेक्सेशन लीजिए या आप 12.5% इंडेक्सेशन लेके आप 20% देंगे, पर अगर आप इंडेक्सेशन नहीं ले रहे हैं तो वो 12.5% सीधा सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को माइनस करता है, परंतु ये लॉस में ऐसा नहीं है। जब आप लॉस है तो लॉस सीधा सीधा आप इसको, क्योंकि आपका 800,000 का सीधा लॉस दिख रहा है तो वो लॉस उस तरीके से नहीं सीधा इसमें कैलकुलेट करा जाएगा। बिल्कुल 800,000 जो दिख रहा है आपको वो इस समय सही दिखाई दे रहा है, इसी को आप आगे कैरी फॉरवर्ड करिए या आप सेट ऑफ कर सकते हैं। आपका दूसरा सवाल है कि अभी तक आपका प्रोसेस होकर नहीं आया, तो जो नॉर्मली कैप्टन साहब ने देखा है जो जिन रिटर्न्स में कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस होता है उनमें प्रोसेसिंग में थोड़ा वक्त लगता है, उसमें थोड़ा सा डिले होता है, बाकी की आपकी घर की जो रिटर्न्स हैं वो सिंपल रिटर्न्स होंगी, तो ये भी आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा, इसका इंतजार करिए। अभी तो आपने जुलाई में फाइल ही किया है, अभी तो हम मुश्किल से एक सवा महीना ही वहां से चलकर आए हैं, तो आई थिंक बाय अक्टूबर नवंबर आप तक, और दिसंबर से पहले तो पक्का ही आ जाएगा, तो क्योंकि आपकी कैपिटल लॉस है इसलिए थोड़ा सा डिले दिख रहा है, बाकी प्रोसेस जो कैलकुलेशन दिखा रहा है वो मुझे सही नजर आ रही है। जी,
2: भिलाई से रवि हमारे साथ है। रवि जी, आपका प्रश्न क्या है?
3: नमस्ते शरद सर, नमस्ते।
1: नमस्ते रवि जी।
3: अभी एक मिस्टर प्रसाद के जवाब से क्यों लेते हुए पूछ रहा हूँ, प्रॉफिट बुकिंग वाली बात पे
1: जी,
3: कि मेरा जो है म्यूचुअल फंड पे करीब 2018 से जो है SIP करते जा रहा हूँ
1: जी,
3: और मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो लगभग डबल से थोड़ा सा ऊपर ही है अभी।
1: अच्छा अच्छा।
3: और मुझे फंड्स की कोई भी जरूरत नहीं है अभी
1: जी,
3: और मैं ये SIP कंटिन्यू करके रखूंगा
1: जी,
3: तो क्या मुझे भी प्रॉफिट बुक करते चलना चाहिए कि मैं रख छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मेरा ये सोचना है कि शायद रखूंगा तो रीइन्वेस्ट होता रहेगा, तो और मतलब उसका प्रोग्रेशन अच्छा रहेगा बढ़ने का।
1: रवि, बहुत अच्छा सवाल है ये, और ये बहुत ही काम का सवाल है, मुझे लगता है बहुत लोगों का ही होगा। अभी मैं यहाँ सलाह दूंगा कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आप बुक करते चलिए, क्योंकि आपने कहा आपका डबल से ज्यादा हो गया है, आप आगे कंट्रीब्यूट करते रहिए, पर पीछे जो प्रॉफिट हुआ है, आई थिंक जो अभी मैंने प्रसाद साहब को बोला था, प्रॉफिट इन द बैंक इज बेटर देन प्रॉफिट इन द बुक्स, क्योंकि मार्केट जो है बहुत चैलेंजिंग आप देख रहे होंगे पिछले 1-2 साल से, बहुत चैलेंज थ्रो कर रही है। आई मीन आई होप कि आपने जहां जिस फंड में किया हुआ है वो बहुत अच्छा फंड है, उसने अच्छे रिटर्न्स दिए, पर मार्केट जो पीछे कर रही है कोई गारंटी नहीं होती वो आगे करे, और जो आगे होने वाला होता है ये जरूरी नहीं कि पीछे ऐसा हुआ हो, तो इसलिए मैं सलाह दूंगा, क्योंकि आप एक अच्छे प्रॉफिट में है तो मैं सलाह दूंगा कम से कम आधे का आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बाकी के आधे में बने रहिए और आगे करते रहिए। आप देखिए, फिर वही बात आती है जो मैंने मिस्टर प्रसाद को कहा था, आप सुन रहे थे कि बहुत स्पेसिफिक जवाब तो जब ही दिया जा सकता है जब हम यहां फंड्स के नाम ले, कौन से सेक्टर के हैं, सेक्टर स्पेसिफिक है, या आपने कोई हाइब्रिड लिया हुआ है, या आपने कोई लिक्विड फंड लिया हुआ है, कौन से फंड आपने लिए हुए हैं, डिफेंस में है कि FMCG में है, फंड्स के नाम क्या है, तो बाकी डिटेल्स। तो
4: क्वेश्चन इज दैट वंस ही बुक्स द प्रॉफिट, व्हाट शुड ही डू विद दैट अमाउंट, शुड ही पुट इट इन FD, व्हाट शुड ही डू?
1: मुझे लगता है कि आई थिंक राजेश, व्हाट रवि शुड डू इज कि अगर प्रॉफिट जब आप बुक करेंगे तो सवाल यह है कि पैसे का करें क्या, ये भी एक समस्या बन जाती है, लोग तो पैसे कहते हैं पैसे है नहीं। आई थिंक आई वुड सजेस्ट यू नो, यू कैन प्रोबेबली लुक एट सम गोल्ड ETFs एंड सिल्वर ETFs, ऑल्दो यू मस्ट पे अटेंशन टू द डिस्क्लेमर विच राजेश रेड इन द बिगनिंग, दैट इन्वेस्टमेंट एडवाइस शुड बी टेकन फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइजर, बट इफ आई वॉज यू रवि, आई वुड हैव पुट सम इन गोल्ड एंड सिल्वर ETFs बिकॉज इट इज गिविंग यू अपॉर्चुनिटीज एंड आई फील द लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स are looking very good. So some you can keep liquid in your FDs and all that, but maybe you don't need funds, but be very watchful. मुझे लगता है ये जो समय है ना रवि, ये पैसे, कुछ पैसे को कई बार नहीं इन्वेस्ट करना भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, तो इसको रख के थोड़ा वॉचफुल रहिए। यहां से नवंबर तक जब तक अमेरिका में मिड टर्म पोल है, काफी उतार चढ़ाव मुझे आगे दिखाई दे रहे हैं, बहुत रोलर कोस्टर टाइप राइड दिख रही है, तो कुछ प्रॉफिट बुक करिए।
4: So what if कुछ मेंटेन्स दिस स्टेटस को?
1: वेल, why I suggested him to book profit is because in case market takes another shocker और इनकी कुछ NAV नीचे आ जाती है, तो इन्होंने जो अभी तक डबल हो रहा है, मैं ये नहीं चाहता कि जो प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है, और अच्छा प्रॉफिट है रवि, मैं मानता हूं डबल होना एक अच्छा प्रॉफिट है, तो उसको कुछ बुक करिए, हो सकता है कम हो गया राजेश, तो फिर मैं देखिए, मैं ये नहीं चाहता कि रवि का जो है जो ऑलरेडी प्रॉफिट

0: चुका है वो चला जाए. सो रवि, आई वुड सजेस्ट बुक सम एंड री इन्वेस्ट इन इन स्टॉक ETF. कीप सम लिक्विडिटी विद यू, बी वॉचफुल, कीप लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड देन जंप इन, यू नो द मोमेंट यू फाइंड. आप मार्केट मंत्रा से तो रेगुलर जुड़ते हैं, हम समय समय पर उसकी चर्चा करते रहेंगे. और हाँ राजेश और निखिल, प्रॉफिट बुक करें तो हमें रेडियो के माध्यम से एक आध लड्डू वड्डू अगर दे दे तो अच्छी बात. जी.
1: और दिल्ली से ही हमारे आज के अगले श्रोता है सतपाल सिंह. सतपाल जी स्वागत है, सवाल पूछिए.
2: सर नमस्कार.
0: नमस्कार जी.
2: मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार और सर जी को नमस्कार.
0: नमस्कार जी.
2: सर जी मैं आपकी वीडियो भी देखता हूँ दिल्ली में जो आपका गोल्ड सिल्वर चाहती है
0: जी.
2: और अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ब्रिक्स की जो समिट होने वाली है 12 सितंबर को
0: जी,
2: तो इसमें क्या डिस्कशन रहेगा, क्या इसके ऊपर जो अमेरिका और ईरान का जो युद्ध है उसके ऊपर भी कोई डिस्कशन होगा, कुछ सोल्यूशन निकलेगा?
0: बिल्कुल डिस्कशन होगा जी.
2: हाँ जी. दूसरा क्वेश्चन ये है कि निफ्टी के क्या रहेंगे एक्सपर्ट दो तीन साल में, कहीं सुनने में यहाँ था कि ये 25,000 के लेवल तक चला जाएगा.
0: जी जी जी. चलिए पहला आपका ब्रिक्स से संबंधित है. ब्रिक्स पे जो मुझे एजेंडा रहने वाला है, यू नो राजेश, आई थिंक निखिल भी अग्री करेंगे, डिफेंस ये जो युद्ध चल रहे हैं इन पे चर्चा तो अनिवार्य है, मुझे लगता है होगी ही होगी, क्योंकि ब्रिक्स या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन चाहेगी कि शांति, विश्व शांति बनी रहे. इसके अलावा ट्रेड पर, डिफेंस पर, ग्लोबल सिक्योरिटी के ऊपर और कुछ कल्चरल बात भी होगी. म्यूचुअल जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं भारत में, भारत उसके ऊपर भी चर्चा होगी. बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट ब्राजील के साथ चर्चा हो सकती है. रशिया से हमारा जो ऑयल इंपोर्ट है उस पर चर्चा हो सकती है. चाइना आई थिंक डिस्कस करना चाहेगा, जो ब्लॉकेज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हुई हुई है उसके लिए चाहेगा कि ब्रिक्स एक डिक्लेरेशन दे कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलना चाहिए, चाहे वो ईरान की तरफ इशारा हो, अमेरिका की तरफ इशारा हो, खुलना चाहिए दुनिया का ट्रेड नॉर्मल. और ये जो ट्रेड एम्बार्गोस लगाए जा रहे हैं ये नहीं होने चाहिए, ये सब चर्चा होगी. और मुझे लग रहा है दबी आवाज में या शायद अनऑफिशियली डिक्लेरेशन ना, एक ब्रिक्स करेंसी के ऊपर मुझे लगता है कहीं पर शायद एक बैकडोर डिस्कशन होगा, क्योंकि डॉलर ने जिस प्रकार से दुनिया में थोड़ी सी हलचल मचाई हुई है और डॉलर की वजह से बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित है. मुझे नहीं पता ऑफिशियली को डिक्लेयर, क्योंकि पिछली ब्रिक्स समिट में जब डॉलर पे चिंतन हुआ था तो डोनाल्ड ट्रंप साहब काफी उखड़ गए थे, नाराज हुए थे. तो अब उनको नाराज तो कोई करना नहीं चाहेगा सीधे तौर पर. तो ये सब चर्चाएं होने की उम्मीद है. निफ्टी आपने पूछा दो तीन साल में, मुझे लग रहा है दो तीन साल में तो प्रोस्पेक्ट बुरे नहीं है, पर थोड़ी सी सतपाल जी ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है इसको लेके मैं आजकल विशेष चिंतित हूं. पता नहीं मुझे लग रहा है मैं ज्यादा चिंतित हूं या सिचुएशन ऐसी बन रही है, क्योंकि रशिया नेटो के बीच में युद्ध और घमासान हो गया है, ईरान यूएस का कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा. जब तो ये थोड़ा सा इस पर नजर बना के रखिए, संभल के चलने का वक्त है ऐसा मुझे लगता है.
3: Moving on, Wall Street ended lower yesterday as hotter than expected employment data fueled concerns over a possible rate hike. Among the major indices, the Dow Jones Industrial Average declined 0.5%, the S&P 500 lost 0.4%, and the Nasdaq Composite fell 0.3%. For the week, Nasdaq rose 0.4%, S&P 500 eked out 0.1% gain, while Dow dropped 0.3%. On the economic front, total non-farm payroll employment increased by 1,62,000 in August, while the unemployment rate remained unchanged at 4.1%, according to the U.S. Bureau of Labor Statistics. Sharad, a possible rate hike?
0: Well, the Truth Social post made by President Trump about Fed to, threatening that they should not increase the interest rates, else he's going to stop trading with the countries on which the U.S. runs deficit. I have my doubts, although the economic principle-based assessment says yes. But somehow I feel that it just may not be done, looking at the political situation in America at this point of time.
3: Okay. Global crude oil prices rose sharply over the week as disruptions around the Strait of Hormuz entered their seventh month, driving up the geopolitical risk premium in global energy markets. During the week, Brent crude November futures surged by 9.3% to settle at $96.28 per barrel. West Texas Intermediate crude October futures soared 9.7% to end at $91.48 per barrel. Since we're talking about crude, which is one of the reasons why, despite strong domestic economic data, our Domestic equity indices declined for the fourth consecutive week. What could be on the anvil?

0: I think the markets are looking outwards. You know, the markets are overpowered or overwhelmed by the crude oil prices, Iran, US tensions, dollar index, bond yields. So the markets somehow are just forgetting that the country is doing great guns. We've got 7.8% GDP. So the markets start looking inwards, they'll be happy. But the markets are looking outwards, which I think this is something which is beyond anybody's control. I hope the operators and traders are listening to us, and they better start looking inwards.
1: दिल्ली से हमारे आज के अगले श्रोता हैं जय किशन
2: जी. नमस्कार.
0: नमस्कार जी.
2: मैं आपको प्रणाम करता हूँ. मेरी एज 82 ईयर है और आई एम ए टोटल ब्लाइंड.
0: अच्छा.
2: मैंने भी 5 साल पहले होम लोन लिया था 25 लाख रुपए का
0: जी
2: HDFC बैंक से
0: जी.
2: अब उन्होंने 10 साल के लिए एक किस्त रेगुलर बांध दी की 28,000 रुपए पर मंथ आपको जमा कराना है
0: जी.
2: कोई दिक्कत नहीं है. 5 साल से मैं जमा करा रहा हूँ साहब
0: जी.
2: ये जो मेरा पेमेंट है वो ब्याज में जमा हो रहा है
0: जी.
2: अब पहले स्टेट बैंक से ये होता था कि भाई जो आप किस्त जमा कराई 28,000 रुपए की, पहले महीने आपने 56,000 जमा हुए तो उसका ब्याज कम हो जाता था
0: जी.
2: लेकिन अभी 10 साल तक मेरा अगर ब्याज में सारा पैसा कैपिटल जाता रहेगा तो फिर एंड के अंदर जो है मेरे को कैसे फायदा होगा. ये कठुआ ब्याज तो लगा नहीं मेरे ऊपर, नहीं तो ये तो 24% से भी का ब्याज लगता है साहब. तो कृपया ये बताएं कि मुझे नुकसान होगा या मुझे फायदा होगा एंड में जमा कराने के बाद.
0: प्रेमजीत जी, पहले तो हमारा भी आपको सादर प्रणाम. आपकी बात ठीक है. ये हाउसिंग लोन की एक टिपिकल प्रॉब्लम है निखिल राजेश, के शुरू में वो ब्याज लेते रहते हैं. मान लीजिए आपका 20 साल का लोन है तो शुरू के सालों में वो ब्याज लेते हैं. और जो बात की प्रेमजीत जी, जो किस्त होती है आखिर की, उनमें आप तो आप अगर एक किस्त को देखेंगे तो उसमें ब्याज का कंपोनेंट ज्यादा होगा शुरू में. और प्रिंस अजय किशन जी, क्षमा करें, क्षमा चाहता हूं, तो उसमें

0: प्रेमजीत जी, बहुत जल्दी से आपका सवाल पूछिए।
1: सर, आप सब लोग को हार्दिक बधाई। और गुरुदेव, मेरा प्रश्न आपसे सीधा ये है कि सर, आपको सुनकर लोग बड़ा कंफ्यूज हो गए हैं।
2: अच्छा,
1: और जैसे आप मेरा द्रोणाचार्य हैं, मैं आपका अर्जुन हूँ, अब लोग ये पूछने लगे हैं सर कि क्या गोल्ड और सिल्वर भी मतलब ब्लैकआउट हो सकता है क्या सर?
2: ब्लैकआउट हो सकता है? ब्लैकआउट का मैं अर्थ नहीं समझ पाया। ब्लैकआउट का मतलब कि लोगों को मिलना खरीदना बंद हो जाए? नहीं, ऐसा तो प्रेमजीत जी कभी नहीं हुआ, ना हमने किसी कार्यक्रम में इस प्रकार से बोला है ब्लैकआउट हो जाता है। कहीं इन्होंने ये सुना होगा कि आगे विश्व युद्ध होता है तो टेक्नोलॉजी प्रभावित होगी, उसकी वजह से सर्वर्स
3: कमोडिटी तो नहीं हो
2: सब, पर कमोडिटी जो हार्ड फॉर्म में है गोल्ड सिल्वर, बल्कि वो तो ज्यादा सुरक्षित, मैं उसको मानता हूं। और कोई कंफ्यूज नहीं हुए प्रेमजीत जी? कोई कभी कंफ्यूज करने का तो मार्केट मंत्रा का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपकी शंका निवारण होगी।
0: शरद जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारे श्रोताओं की जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: शुक्रिया, धन्यवाद।
3: थैंक यू शरद फॉर बीइंग विद अस। एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस डिक्लाइन फॉर द फोर्थ कंसेक्यूटिव वीक, सेंसेक्स एंड निफ्टी फॉल्स अराउंड 1%। यूएस स्टॉक मार्केट indices display mixed performance this week, and global crude oil prices surge over 9% during the week. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
5: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

0: Surgiome. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर विशेष रिपोर्ट।
1: नमस्कार, मैं हूँ निखिल कुमार। श्रोताओं, आज 5 सितंबर है यानी शिक्षक दिवस। आज इस अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के शिक्षकों को सम्मानित किया। इस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए कुल 82 शिक्षकों और शिक्षाविदों का चयन किया गया था। इनमें 48 स्कूली शिक्षक, 21 उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के शिक्षक तथा 13 कौशल प्रशिक्षक शामिल हैं। अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक की भूमिका को व्यापक संदर्भ में रखने पर जोर दिया। राष्ट्रपति स्वयं भी शिक्षिका रह चुकी हैं और उन्होंने अपने शिक्षक जीवन की स्मृतियों को भी साझा किया। आइए सुनते हैं राष्ट्रपति को।
2: देश के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर हमारे देशवासी उनके प्रति एवं समस्त शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। जो समाज शिक्षकों का सम्मान करता है, वो समाज सही अर्थ में प्रगतिशील होता है। शिक्षक के बीच आकर मेरे अंदर विद्यमान विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही जीवंत हो जाता है। मुझे अपने शिक्षकों का सादर स्मरण होता है। उनके स्नेह और मार्गदर्शन के बल पर ही मैं अपने जीवन यात्रा में आगे आकर आपके सामने खड़ी हूँ। साथ ही मुझे अपने विद्यार्थी भी याद आते हैं, जिन्हें मैंने ओडिशा के रायरंगपुर में स्थित श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में पढ़ाया था। मैंने अपने विद्यार्थियों से भी बहुत कुछ सीखा है। उन विद्यार्थियों के प्यार को मैं अपने जीवन के बहुत बड़ी उपलब्धियां मानती हूँ। मैं भी कभी शिक्षक समुदाय की सदस्य रही हूँ, इससे मुझे विशेष सार्थकता का अनुभव होता है।
1: श्रोताओं, भारत में आधुनिक शिक्षा के विकास की यात्रा में कई ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने शिक्षा को समाज में बदलाव का माध्यम बनाया। इनमें सावित्री बाई फुले का योगदान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उन्होंने ऐसे समय में लड़कियों और वंचित वर्गों की शिक्षा के लिए काम किया जब महिलाओं की शिक्षा को लेकर समाज में अनेक बाधाएं थीं। इसी तरह रविन्द्रनाथ ठाकुर ने शिक्षा को केवल किताबों और कक्षा की सीमाओं तक नहीं देखा। शांति निकेतन के माध्यम से उन्होंने प्रकृति, कला, रचनात्मकता और स्वतंत्र सोच को शिक्षा का हिस्सा बनाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपने संबोधन में शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने वाले ऐसे महान व्यक्तित्वों को याद किया। आइए सुनते हैं उनका ये महत्वपूर्ण संदेश।
2: सावित्रीबाई फुले आधुनिक युग में विद्यालय में पढ़ाने वाले भारत की पहली शिक्षिका के रूप में

0: जाने जाते हैं। बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्रांतिकारी पहल की थी और 19वीं सदी में बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। आज के दिन कांति ज्योति स्वरूपा महान शिक्षिका सावित्री बाई फुले की मूर्ति को मैं सादर नमन करती हूँ। 20वीं सदी के आरंभ में पश्चिम बंगाल के बोलपुर जिले में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की तथा ओडिशा के पुरी जिले में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास ने वन विद्यालय यानी ओपन एयर स्कूल की स्थापना की थी। उन विद्यालयों की स्थापना के पीछे ये उदात्त विचार था कि प्रकृति की गोद में विद्यार्थियों का सहज विकास होता है। देश को बहुआयामी योगदान देने वाले यथा सर्वजनात्मक शिक्षा के प्रति विशेष रूप से समर्पित उन विभूतियों को मैं सादर नमन करती हूँ।
1: श्रोताओं, भारत अब ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ दुनिया की स्किल कैपिटल बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में शिक्षा, कौशल और नवाचार को एक दूसरे से जोड़ना आवश्यक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों को भविष्य का निर्माता बताते हुए भारत को दुनिया की स्किल कैपिटल बनाने के लक्ष्य से शिक्षा को जोड़ने पर जोर दिया।
0: ये प्रसन्नता की बात है कि पुरस्कार विजेता में गांव के स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या अधिक है। मुझे आशा है कि इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं की अध्यापन एवं प्रशिक्षण पद्धतियाँ और उपलब्धियाँ उन शिक्षकों को भी शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए प्रेरित करेगी। पुरस्कार विजेताओं के योगदान और उपलब्धियाँ पर केंद्रित फिल्मों को देखकर मेरा ये विश्वास और भी दृढ़ हुआ है कि निष्ठावान शिक्षक अग्रिम पंक्ति के राष्ट्र निर्माता होते हैं। देश के विकास में एकेडमिक एक्सीलेंस, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत अधिक महत्व है। भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने के साथ साथ स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित करना हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता में से शामिल है।
1: श्रोताओं, बच्चे के जीवन के शुरुआती वर्ष उसके सीखने, व्यवहार और व्यक्तित्व की नींव रखते हैं। राष्ट्रपति ने भी अपने संबोधन में कहा कि ज्ञान और कौशल जीवन में कभी भी हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन बचपन में अच्छे आचरण तथा मूल्यों को विकसित करना अधिक प्रभावी होता है। प्राथमिक शिक्षा के महत्व पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
0: भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि बच्चों की देखभाल करना पौधों को जोर से सीखने जैसे बराबर है। स्कूल एजुकेशन शिक्षा व्यवस्था का आधार है। ज्ञान और कौशल तो कभी भी प्राप्त किया जा सकता है, परंतु बचपन में ही सदाचार की शिक्षा देना अधिक प्रभावी सिद्ध होता है। आरंभिक कक्षा में बच्चों के बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक विकास पर निष्ठापूर्वक ध्यान देकर हमारे शिक्षक अच्छे विद्यार्थियों और कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों की भावी पीढ़ियां तैयार करते हैं। विद्यार्थियों ही शिक्षकों की पहचान होते हैं। विद्यार्थी अपने शिक्षकों द्वारा पढ़ाया गया पाठ्यक्रम भले ही भूल जाए, लेकिन उनके व्यवहार को ये सदैव याद रखते हैं।
1: श्रोताओं, प्राथमिक शिक्षा मजबूत होने का अर्थ केवल ये नहीं कि ज्यादा बच्चे स्कूल पहुँचे, इसका मतलब ये भी है कि अलग अलग सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से आने वाले बच्चों को आगे बढ़ने का समान अवसर मिले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षा को संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्श को लागू करने का सबसे प्रभावी माध्यम बताते हुए शिक्षकों की जिम्मेदारी पर भी जोर दिया।
0: संस्कृत भाषा के शब्द उद्धार का अर्थ होता है खींचकर बाहर निकालना या नीचे से ऊपर ले जाना। विद्यार्थियों का उद्धार करने का पुनीत अवसर केवल शिक्षकों को ही उपलब्ध होता है। हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्शों को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित ना हो। मैं चाहूंगी कि हमारे शिक्षक अपने स्नेह और समर्पण से सभी विद्यार्थियों में ज्ञान, प्रेरणा, नैतिकता और संवेदनशीलता का संचार करें।
1: श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत की। उन्होंने इस बातचीत की झलकियां सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की। प्रधानमंत्री ने बातचीत में कहा कि शिक्षकों को केवल बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर नजर नहीं रखनी चाहिए, बल्कि उनके व्यवहार और रोजमर्रा के जीवन में होने वाले बदलावों को भी समझना चाहिए। बदलती पारिवारिक संरचना के बीच बच्चों के साथ शिक्षक का संवाद और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों में नशे की

0: समस्या को लेकर भी शिक्षकों की भूमिका पर जोर दिया। उनका कहना था कि बच्चों के व्यवहार में बदलाव दिखाई दे तो शिक्षक को उसके कारणों को समझने और बच्चों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए। श्रोताओं, आज एक और चुनौती बच्चों के बढ़ते स्क्रीन टाइम की है। मोबाइल और डिजिटल उपकरण शिक्षा में उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन उनका अत्यधिक इस्तेमाल बच्चों के शारीरिक और रचनात्मक विकास को प्रभावित कर सकता है। प्रधानमंत्री ने शिक्षकों से अभिभावकों के साथ इस विषय पर बातचीत करने और बच्चों को खेल, शारीरिक गतिविधियों तथा रचनात्मक कार्यों के लिए प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षकों की बातचीत के कुछ अंश।
1: परमात्मा ने हरेक को कोई न कोई ताकत दी होती है, उसकी टैलेंट पहचानने के लिए कोई कोशिश करते हैं आप टीचर लोग?
2: बहुत सारी कोशिश करते हैं, इनफैक्ट वही हमारी कोशिश होती है, क्योंकि मेरा मानना है कि हमारे विद्यालय में यानी हमारी कक्षा में जितने बच्चे हैं उन सभी में अलग अलग खूबी है, अलग अलग टैलेंट है, अलग अलग चैलेंज है, और एक शिक्षक के नाते मैं उन सारे टैलेंट्स को आइडेंटिफाई करती हूँ और मैंने किया है।
3: आपने एकलव्य खोल करके एक स्कूल नहीं बनाया, बल्कि लगभग मेरे हिसाब से उतने गुने परिवार को जोड़ा। जो परिवार फर्स्ट जनरेशन लर्नर है आज के दिन में, वो कभी स्कूल नहीं देखे, उनके बच्चे आज हमारे यहाँ से IIT का सपना देख रहे हैं, मेडिकल क्वालिफाई कर रहे हैं।
1: एक विषय है स्क्रीन टाइम, अब ये एक प्रकार का एडिक्शन है। मेरे मन में एक विचार आता है, या तो वो बच्चा खेल कूद के अंदर बहुत रुचि लेने लग जाएगा, खेल कूद मतलब वो वीडियो गेम नहीं, मैंने एक्चुअली मैदान में वो खेलना, तो धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आ सकता है। और ऐसे में क्रिएटिविटी की तरफ हम बच्चों को जितना ज्यादा जोड़ेंगे, और हमने ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रमों की रचना को आदत बनानी चाहिए। अब जैसे ड्रग्स का मामला, अभी कुछ बड़े शहरों में या यूनिवर्सिटी में रहा सा नहीं, पता ही नहीं किसी को क्या है, कोई आकर के दे देता है। क्या उस संबंध में लगातार आज के जो आप टीचर्स हैं, क्या अवेयरनेस, उसके कारण क्या भय हैं, क्या माइन्यूटली ऑब्जर्व करने में कोई किसी बच्चे में बदलाव तो नहीं आ रहा है? मैं बात तो आप लोगों से कर रहा हूं, लेकिन एक प्रकार से मैं पूरे शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूं कि हमें बहुत पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके, सिलेबस से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए, और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकता है। टीचर का काम है कि उसके भीतर का बचपन बना रहे।
0: श्रोताओं, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों की सूची पर नजर डालें तो अलग अलग हिस्सों से आने वाले शिक्षकों की कहानियों में एक समानता दिखाई देती है। उन्होंने अपनी कक्षा की जरूरत के हिसाब से पढ़ाने के नए नए तरीके तलाशे हैं। आइए पुरस्कार विजेताओं के योगदान को विस्तार से समझते हैं।
4: राजस्थान के सरकारी स्कूल के शिक्षक डॉक्टर दिव्येंदु सेन ने ग्रामीण विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान से जोड़ते हुए उनके क्षुद्र ग्रहों की पहचान और खोज से जुड़े कार्यक्रमों में प्रशिक्षित किया। उन्होंने कम लागत वाले तकनीकी समाधान भी विकसित किए, जिनमें AI आधारित जीव विज्ञान शिक्षण मॉडल, डिजिटल बायोलॉजी लैब और पेड़ों के बारे में QR कोड आधारित सीखने की व्यवस्था शामिल है। हरियाणा के अनिल कौशिक ने गणित को आसान और रोचक बनाने के लिए आधुनिक मैथ्स लैब तैयार की। इसमें 40 से अधिक शिक्षण मॉडल और डिजिटल प्रयोगशाला भी शामिल है। उन्होंने वैदिक गणित पर पाठ्यपुस्तकों में योगदान दिया और दीक्षा पोर्टल के लिए भी शिक्षण मॉड्यूल तैयार किए। इनके योगदान के लिए इन्हें मैथ विजार्ड के रूप में जाना जाता है। राजस्थान की डॉक्टर वर्तिका गुलाटी ने गणित और विज्ञान को रोजमर्रा की चीजों से जोड़ने का प्रयास किया। वे मूंगफली के जरिए बीज गणित और पतंगों के माध्यम से ज्यामिति जैसे विषयों को समझाती हैं। उनका प्रश्नों से विज्ञान मॉडल रटने की जगह बच्चों को सवाल पूछने और खुद उत्तर तलाशने के लिए प्रेरित करता है। ओडिशा के पदाराज उमाकांत नायक ने विद्यार्थियों को केवल पढ़ाने के बजाय उन्हें चीजें बनाने के लिए प्रेरित किया। उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने 50 से अधिक प्रोटोटाइप तैयार किए, जिनमें कम लागत वाली स्वचालित प्लेट धोने की मशीन भी शामिल है, जिसे भारत सरकार से पेटेंट मिला। शिक्षा का असर केवल बच्चों तक सीमित नहीं रहता, इसका उदाहरण असम के शिक्षक राजेश बरदोलोई का काम भी है। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को घर जाकर अपनी उन माताओं को पढ़ाने का काम दिया जो पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। इसमें बुनियादी साक्षरता के साथ स्मार्टफोन और UPI के इस्तेमाल जैसी रोजमर्रा की जरूरतों को भी शामिल किया गया, यानी कक्षा की शिक्षा परिवार और समुदाय तक पहुंची। महाराष्ट्र की डॉक्टर कविता नरसिंह राव गिट्टे ने प्रवासी गन्ना मजदूरों के बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ने के लिए लंबे समय तक काम किया। वहीं खेलों के क्षेत्र में भी उन्होंने विद्यार्थियों को आगे बढ़ाया। गोवा के महादेव हनुमंत शिंदे का काम विशेष जरूरतों वाले बच्चों और खेलों के बीच संबंध का उदाहरण है। उन्होंने विशेष ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को तैयार किया और भारतीय फ्लोर हॉकी टीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां हासिल की। लद्दाख के मोहम्मद मुस्तफा कुमाल ने भी सीमित संसाधनों के बीच

0: शिक्षा को अनुभव आधारित बनाने का प्रयास किया। उनके काम में छोड़े गए सैन्य बंकरों को विज्ञान प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल करना और कक्षा को मॉक पार्लियामेंट में बदल कर विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ना शामिल है।
1: समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
2: श्रोताओं, शिक्षक हमारे जीवन में उन लोगों में शामिल होते हैं जिनका प्रभाव अक्सर कक्षा खत्म होने के बाद भी बना रहता है। कोई शिक्षक किसी बच्चे में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा पैदा करता है, कोई उसे अपनी भाषा और संस्कृति से जोड़ता है, तो कोई मुश्किल परिस्थितियों के बीच उसे आगे बढ़ने का आत्मविश्वास देता है। शिक्षक दिवस हमें ऐसे ही योगदानों को याद करने और शिक्षा के बदलते स्वरूप को समझने का अवसर देता है। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया था हमारे सहयोगी अनिकेत ने और तकनीकी सहयोग दिया अक्षत ममगाई ने। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर विशेष रिपोर्ट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdetalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289-0940044।
4: सुर्खियों में

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर में 7.8% की तिमाही वृद्धि उसकी आर्थिक मजबूती को दिखाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत गतिरोध से नीतिगत सक्रियता तक का लंबा सफर तय किया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
1: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कॉलेज और देश के शिक्षा क्षेत्र दोनों के लिए 100 साल के इस अहम पड़ाव के महत्व पर प्रकाश डाला और संस्थापक श्रीराम को श्रद्धांजलि दी और उनकी दूरदर्शी सोच को नमन किया। इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली मेट्रो से एसआरसीसी गए और कॉलेज के शताब्दी समारोह में शामिल हुए। शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉपआउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है। समारोह में 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों के 48 चयनित स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति भवन ने कहा कि भारत के राष्ट्रपति ने डॉ दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। ये नियुक्ति उनके पदभार संभालने की तारीख से प्रभावी होगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने स्व

0: दोस्त असहमति और विचार विमर्श की संस्कृति के महत्व पर जोर दिया। नई दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ब्रिक्स के सदस्य देशों और सहयोगी देशों के प्रतिनिधिमंडलों को संबोधित किया। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर सऊदी अरब के रियाद पहुंच गए हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सऊदी अरब में भारतीय राजदूत विपुल और सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उपमंत्री डॉ. तारिक अल हमाद ने उनका स्वागत किया। भारत और नेपाल के बचाव दल का चिली में सुरंग में बचाव अभियान जारी है और सुरंग के भीतर से भारी मलबा, पानी तथा कीचड़ हटाया जा रहा है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने बताया कि बचाव अभियान को सुगम बनाने के लिए पास के सियाफ रुबेसी से सुरंग के प्रवेश द्वार तक एक पहुंच मार्ग का निर्माण भी चल रहा है। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 56 रन का लक्ष्य रखा था। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद और में 3 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। बाएं हाथ की स्पिनर श्री चरनी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 रन देकर 3 विकेट लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अमृत भूषण। Prime Minister Narendra Modi said India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. Addressing the gathering at the centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce, SRCC, in New Delhi yesterday, Mr. Modi said the world is watching India become the fastest growing major economy. Contrasting past struggles with today's achievements, the Prime Minister emphasized that terrorism has been defeated, with armed forces confidently striking enemies in their own homes, and peace restored from Jammu and Kashmir to the northeast.
2: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनने से हुए देख रही। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।
1: Presenting hard economic data to counter persistent critics, the Prime Minister shared that smartphone exports now exceed 2.5 lakh crore rupees, while domestic defence production has hit an all-time high of nearly 2 lakh crore rupees. Prime Minister said Sri Ram College of Commerce, SRCC, has given generations of students the opportunity to learn, grow and make a difference over the years. Mr. Modi said the college has distinguished itself over the years, making a mark for academic excellence. He termed the alumni of SRCC as very special and the OGs. The Prime Minister stated that former Finance Minister Arun Jaitley was an alumnus of SRCC. He said SRCC alumni have left their mark in every sector. Prime Minister Modi highlighted the profound significance of this 100-year milestone for both the college and the nation's education sector and paid tribute to founder Sri Ram and bowed to his enduring vision. President Draupadi Murmu has appointed Dr. Dinesh Sharma as the Lieutenant Governor of the Andaman and Nicobar Islands. A press communique issued by the Rashtrapati Bhavan informed about it. Dr. Sharma will succeed Admiral Devendra Kumar Joshi, retired, who was serving as Lieutenant Governor of the islands since October 2017. Dr. Sharma is presently a Rajya Sabha MP from Uttar Pradesh and has also served as Deputy Chief Minister of the state. India and Nepal rescue teams

नमस्कार, आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर मैं हूं आपके साथ रश्मि कुकरेती और कार्यक्रम वही आपका अपना पानी पर लिखी कहानी, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी कहानियाँ जो दिल को छू जाती हैं। आज जो कहानी हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसका नाम है दस्तक खुशियों की। इसे आपके लिए लिखा है शीतल शाह ने। तो आइए सुनते हैं ये कहानी।

इस साल का सबसे युवा और सर्वाधिक कामयाब स्टार्टअप के वर्ग में जो विजेता कपल है उसका नाम है मनस्वी और सार्थक, एंकर ने कहा। स्टार्टअप की दुनिया में आप दोनों रोल मॉडल माने जाते हैं। इन्होंने नई सोच, हिम्मत और मेहनत के साथ स्टार्टअप को नया आयाम दिया है। ये एक ऐसे युवा स्व उद्यमी है जिन्होंने मेड इन इंडिया की सोच को गति दी है, प्रगति दी है, और आज ऐसे ही लोगों की कामयाबी को हम मना रहे हैं। सबसे पहले आइए सुनते हैं मनस्वी और सार्थक से उनकी कामयाबी का राज। एंकर ने ये प्रश्न किया तो सार्थक ने कहा, देखिए दिल्ली में 3 साल तक मैंने डिलीवरी बॉय के तौर पर काम किया। उस दौरान बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा। लोग घर पर बैठे अपने दरवाजों पर उस दस्तक का इंतजार करते हैं कि कोई उनके लिए चीजें डिलीवर करे। इंतजार करने वाले बहुत ज्यादा होते हैं और डिलीवर करने वाले बहुत कम। तो हमारा पहला स्टार्टअप था डिलीवरी सर्विस ट्रेनिंग। उधर मनस्वी ने भी बताया कि वो कनाडा से पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ाई के वक्त महिला सशक्तिकरण यानी विमेन एम्पावरमेंट का प्रोजेक्ट कर रही थी और उसकी टीम को बेस्ट कम्युनिटी प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला था। उसी वक्त उसने सोच लिया था कि भारत लौटकर वो जरूर कुछ अपना काम करेगी और उसकी खुशकिस्मती कि उसे सार्थक का साथ मिला। मनस्वी ने कहा, हमारा दूसरा स्टार्टअप डिलीवरी गर्ल्स की ट्रेनिंग और टीम तैयार करना था। एंकर ने फिर पूछा, आपका लेटेस्ट स्टार्टअप का वीडियो वायरल हुआ है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? सार्थक बोला, इसका श्रेय तो मम्मी को जाता है। उन्हीं का आइडिया था कि ऑफिस में काम करने वाले प्रोफेशनल्स को घर जैसा खाना बनाकर खिलाएं, डिलीवर करें तो फिर आम के आम और गुठलियों के दाम। बहुत सारी ग्रैनियां हैं जो अच्छा खाना बनाती हैं और फूड डिलीवरी सर्विस भी करना चाहती हैं, पर नहीं जानती कहां से करें, कैसे शुरू करें। तो हम लोगों ने फूड फ्रॉम किचन टू ऑफिस ऐप शुरू किया और अगले 2 साल में हमारा मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा गृहिणियों को आत्मनिर्भरता की ओर लेकर जाएं। एंकर ने फिर पूछा, कुछ और बताइए अपने सफर के बारे में। सार्थक ने बताया, देखिए कोई भी सफर हो ना, वो एक कदम से शुरू होता है, बशर्ते वो कदम सही दिशा में हो। अगर सही हम सफर मिल जाए तो मंजिल जरूर मिलती है। मैं खुशकिस्मत रहा कि हौसला देने वाली मेरी माँ और सही राह दिखाने वाली मेरी हमराही मनस्वी दोनों मेरे साथ थे। पर इस सफर की शुरुआत आसान नहीं थी। मैंने बड़ौदा में हाई स्कूल की पढ़ाई की और उसके बाद में दिल्ली आ गया। फिर मैंने पार्ट टाइम डिलीवरी बॉय का काम करना भी शुरू कर दिया। रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आई, मैं कई बार गिरा, पर माँ की बात याद रहती, इरादे अगर नेक हों तो सपने भी साकार होते हैं, अगर सच्ची लगन हो तो रास्ते

5 साल पहले का वो दिन, कहर मानसून का ऐसा जैसे सैलाब आ गया हो। क्या रास्ते, क्या मकान, हर तरफ पानी पानी, यातायात तो ठप, घर से बाहर निकलना दुश्वार। कितने सारे पेड़ गिर गए और सारे एरिया में बिजली गायब। ऐसे मौसम में सार्थक डिलीवरी करने के लिए निकला। डिलीवरी अपूर्व को देनी थी। अपूर्व के घर में बारिश के कारण वर्क फ्रॉम होम चल रहा था और घर में खाने योग्य कुछ भी नहीं था। जब उसने डिनर का ऑर्डर दिया तो बाहर का नजारा देखकर मायूस हो गया। यहाँ पेट में आग लगी थी और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई और दरवाजा खोला तो सामने खड़ा था डिलीवरी बॉय, रेनकोट पानी से तरबतर। बिजली नहीं है ना, इसीलिए डोरबेल नहीं बजाई, अपूर्व ने खाने का पैकेट लेते हुए कहा। तो लिफ्ट भी बंद हो गई होगी ना, तुम 7वीं मंजिल तक पैदल आए? वो मुस्कुराया। पेमेंट कैसे करेंगे सर, कैश या ऑनलाइन? अपूर्व ने पैसे दिए और बोला, गरम चाय लोगे या कॉफी? बोलो थैंक यू सो मच, और भी बहुत जगह फूड डिलीवरी करनी है। अगर कुछ देना चाहते हैं सर तो बस अच्छी ऑनलाइन फीडबैक दे देना और रेटिंग दे देना। श्योर श्योर, क्या नाम है तुम्हारा? सार्थक संघवी। खाने का पैकेट खोलने से पहले अपूर्व ने मोबाइल पर ऐप खोला, सार्थक को 5-स्टार रेटिंग दी और लिखा, बेस्ट डिलीवरी।

सार्थक ने रात तक 7 डिलीवरी के ऑर्डर पूरे किए। ऑफिस पहुंचा तो मैनेजर ने सबसे पहले गर्मा गर्म सूप दिया। पूछा, सार्थक तुमने कैसे मैनेज किया? आज 3 बॉयज छुट्टी पर है और बेटा तुमने तो अकेले सारा काम संभाल लिया। बहुत अच्छे, वाह। बॉस अपनी वाह वाही शब्दों से नहीं, पैसों से कर देना। इस बार उन तीनों का बोनस भी मुझे दे देना। दोनों हंस पड़े। तभी मैनेजर का मोबाइल बज उठा। कंपनी के सीईओ का कॉल था। बात पूरी होते ही सार्थक ने पूछा, ऑल वेल? हाँ। बिग बॉस ने बताया कि अपनी कॉम्पिटिटर कंपनी के 2 डिलीवरी बॉयज को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। गोल्डन अपार्टमेंट में जो लड़की से छेड़खानी का केस था, उसकी सीसीटीवी फुटेज में उन दोनों बॉयज की क्लिपिंग मिली है। सारी मीडिया में उसका हो हल्ला हो रहा है। सार्थक ने सूप खत्म करते हुए कहा, कुछ ऐसे बदमाश लड़कों के कारण सबका नाम खराब होता है। बिल्कुल सही, लेकिन तुम्हारी सर्विस फीडबैक तो हमारी

कंपनी में सबसे अच्छी है, बेस्ट रेटिंग मिल रही है। तभी सार्थक का मोबाइल बज उठा। उसने फोन को काट दिया। मैनेजर ने पूछा, भाई ये कौन है जो तुम्हें बार बार कॉल करता है और तुम हमेशा अवॉइड करते रहते हो? फोन फिर बज उठा। इस बार सार्थक ने फोन उठा लिया। हेलो, हेलो माँ, बेटा मैं टीवी पर देख रही हूँ, दिल्ली में तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। अब माँ मानसून है तो बारिश तो होगी ना? बेटा सब तुम्हारी बहुत फिक्र करते हैं, इसीलिए कॉल तो करेंगे ना। तुमने फिर से मनस्वी का फोन काट दिया। हाँ मैं काम पर हूँ, प्लीज। देखो बेटा, अपने पार्ट टाइम जॉब और एंटरप्रेन्योरशिप की पढ़ाई के साथ साथ कभी अपने लिए, अपने अपनों के लिए भी तो वक्त निकालो। ओके मम्मी जी, और कोई हुक्म? अच्छा बड़ौदा कब आ रहे हो, घर कब आओगे बच्चे? अब पहले एग्जाम तो दे दूँ, डिग्री मिल जाए, अपनी पहचान तो बनाऊँ। तुम और तुम्हारे बहाने। चलो ऐसा करो, एक बार मनस्वी से बात कर लो, वो बहुत फिक्र करती है तुम्हारी। माँ मुझे अब रूम पर लौटना है, बारिश बहुत तेज है, बाद में कॉल करूँ।

बाद रिव्यू मीटिंग थी। मैनेजर बोले, देखिए आज कंपनी सीईओ खुद समीक्षा मीटिंग में शामिल होंगे, सब तैयार रहना। सीईओ ने आते ही कहा, बॉयज अब त्योहारों का सीजन शुरू होगा, हमारा टर्नओवर ग्राफ डबल होना चाहिए। हाँ, आर वी रेडी? यस सर, सभी ने बोला। किसी को कोई शिकायत या कोई फीडबैक? सर वो डिलीवरी के लिए जब हम बाइक पर जाते हैं ना तो बहुत परेशानी होती है, कंपनी की पंच लाइन है सबसे तेज डिलीवरी, और स्पीड पर गौर करते हैं तो ट्रैफिक नियमों से पंगा हो जाता है। देखो भाई, रोड रूल्स तोड़े बगैर स्पीड और सेफ्टी में जो बैलेंस बनाए

वही होते हैं बेस्ट डिलीवरी बॉय। पर सर, कुछ कस्टमर्स तो इतनी बदतमीजी से बात करते हैं कि दिमाग घूम जाता है। क्लाइंट इज द किंग या क्वीन, याद रहे, सिर्फ खाना डिलीवर करने जाते हो, कोई दोस्त बनाने नहीं जाते। और सर, अक्सर ये जो रेस्टोरेंट से हम फूड पिकअप करने जाते हैं ना, उनकी पैकेजिंग इतनी खराब होती है कि खाना गिर जाता है। सीईओ ने कहा, देखो सिर्फ डिलीवरी पर ही नहीं, पिकअप पर भी ध्यान देना सीखो, वो बहुत जरूरी है। सर, ये हमारे पिछले 3 महीने की परफॉर्मेंस रिपोर्ट है। सीईओ बोले, एक बार फिर हाईएस्ट रेटिंग एंड बेस्ट फीडबैक है सार्थक। तभी सार्थक का मोबाइल बज उठा, उसने कॉल काट दी। सीईओ ने मुस्कुराकर कहा, गो अहेड टेक द कॉल। माँ, मीटिंग चल रही है, सार्थक बोला। ओ, मैं बाद में करूँ क्या? नो नो, इट्स फाइन, अब बोलो। आपकी आवाज से तो लगता है आप बहुत खुश हो। ऑफ कोर्स, दो दो वजह है, पूछोगे नहीं? मेरे पास कोई और चॉइस है? सुनना तो पड़ेगा, बताओ। रूपा मेहता ने बताया कि तुमने उनके लोन की आखिरी किश्त भी चुका दी है। ऑफ कोर्स माँ, रूपा आंटी और संजय अंकल ने तो मेरी पढ़ाई स्पॉन्सर की है, आप ही से तो सीखा है किसी का एहसान नहीं लेना चाहिए। शाबाश मेरे बच्चे। माँ, आप खुशी की दूसरी वजह भी बताने वाली थी ना? हाँ बेटा, वो रूपा जी ने जो नया क्लाउड किचन शुरू किया है ना, मेहता जी अब उसे और भी बढ़ाना चाहते हैं। हेड शेफ मैं ही होंगी, और उनको तो तुम्हें पता ही है कि मुझ पर कितना भरोसा है। अब वो चाहते हैं कि काम और बढ़े। मनस्वी अगले महीने कनाडा से आ रही है ना? मनस्वी का नाम सुनते ही सार्थक अनमना हो गया, बोला, माँ मैं फोन रखता हूँ, डिलीवरी के लिए जाना है। माँ की बेस्ट फ्रेंड रूपा मेहता की इकलौती बेटी मनस्वी स्कूल के दिनों से ही सार्थक को चाहती थी, लेकिन सार्थक चाहता था समन्विता को। पिता की मौत के बाद सब कुछ बदल गया था। माँ के केटरिंग काम में सार्थक हाथ बटाने लगा। वहीं अचानक से समन्विता दिल्ली चली गई और सार्थक भी आगे पढ़ाई के लिए दिल्ली आ गया। दिल्ली आने का असली कारण था समन्विता को ढूंढना। 3 साल गुजर गए, लेकिन कभी भी समन्विता को भुला नहीं पाया।

पार्ट टाइम डिलीवरी बॉय के काम और स्टार्टअप की पढ़ाई को वो इतनी शिद्दत से करने लगा कि कुछ और सोचने का वक्त ही नहीं रहता था। सार्थक के मैनेजर ने कहा, सार्थक आज ये जो ऑर्डर है ना, ये बड़ा हाई एंड क्लाइंट है और ये स्पेशल केक है और साथ में फ्रेंच क्यूजीन है। देखो संभाल कर डिलीवरी करना। हाँ, एड्रेस दिया, रिहायशी इलाके में पेंट हाउस था। सार्थक ने डोरबेल बजाई, दरवाजा खुला, सामने खड़ी थी समन्विता। इतने सालों बाद अचानक उसको देखकर सार्थक के मन में जज्बातों का सैलाब उमड़ पड़ा। सांसें रुक गईं, मन ही मन पूछ बैठा, अचानक कहाँ चली गई थी? कोई खबर भी नहीं, ना कोई पता। साथ थी, साथ साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, फिर तुम कहाँ चली गई थी? क्या कोई मजबूरी थी? मैं तुम्हें भूल नहीं सका, शहर छोड़कर भी देख लिया, तुम्हें भूल नहीं पाया। ये सब प्रश्न उसके मन में ही चल रहे थे। कुछ कह पाता उससे पहले पीछे से किसी आदमी की आवाज आई, कौन है समन्विता? और समन्विता बोली थी, कोई नहीं, सिर्फ एक डिलीवरी बॉय है। उस आदमी ने कहा, पार्सल रिसीव कर लो, पेमेंट ऑनलाइन कर दिया है। सार्थक चुपचाप खड़ा रह गया। तो क्या उसने मुझे पहचाना नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसने पैकेट लेते हुए पूछा था, तुम दिल्ली में डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हो? वो कुछ जवाब दे पाता उससे पहले ही उसने कहा, त्योहार के दिन आए हो, रुको, टिप देना तो बनता ही है। फिर से उस आदमी की आवाज आई, क्या हुआ समन्विता? समन्विता ने पीछे मुड़कर आवाज दी, कुछ नहीं, डिलीवरी बॉय को टिप दे रही हूँ। वो पर्स लेने अंदर मुड़ी, सार्थक फौरन वहां से निकल गया। सार्थक के आंसुओं को अच्छा बहाना मिल गया था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बादलों से बरसते पानी के साथ आंखों का खारा पानी भी घुल मिल गया। बाइक चलाते वक्त समन्विता नाम का पागलपन आंसुओं के जरिए बाहर निकाल दिया था। सिर्फ डिलीवरी बॉय? बार बार ये बात उसके मन में गूंज रही थी।

ऑफिस पहुंचा तो मैनेजर ने कहा, दरवाजों पर डोरबेल बजाकर घर घर तुम सिर्फ खाना नहीं देते सार्थक, खुशियां डिलीवर करते हो। और देखो आज खुशियां खुद तुम्हें तलाशते यहाँ आ गई हैं। देखो कौन है? सार्थक ने मुड़कर देखा, माँ और मनस्वी। सरप्राइज! मनस्वी के हाथ में केक था। बोली, अब तक तो मेरे फोन को अवॉइड करते थे, ये लो आज अपने बर्थडे केक को काटो, वो तो अवॉइड नहीं कर सकते। सार्थक भावुक हो गया, वो भूल गया था आज उसका बर्थडे है। वो माँ से गले लगकर रो पड़ा। मनस्वी की तरफ देखकर बोला, सॉरी, डिडंट मीन टू अवॉइड यू, बट अपने काम और पढ़ाई को लेकर मैं। माँ बोली, अब बाकी बातें बाद में कर लेना, पहले केक काटो। मनस्वी ने कहा, और बर्थडे बॉय के साथ हम करेंगे डिनर। सार्थक बोला, जिंदगी का बेस्ट बर्थडे सरप्राइज मिला है, थैंक यू सो मच आने के लिए और मम्मा को भी साथ लाने के लिए। देखो मैं इंडिया आते ही सबसे पहले तुमसे मिलना चाहती थी, बात करना चाहती थी, पर मैं ये भी जानती हूँ कुछ तो ऐसी बातें हैं जो तुम्हें बहुत परेशान कर रही हैं। सार्थक, बचपन से ही हम कितने अच्छे दोस्त रहे हैं, क्या दिल की बात मेरे साथ शेयर नहीं करोगे? मनस्वी, प्राइमरी स्कूल से हम साथ पढ़ते थे, पर पापा के अचानक गुजर जाने के बाद सब कुछ बदल गया। तो क्या तुम्हें मेरे और मेरी फैमिली के साथ अनकंफर्टेबल लगता था सार्थक? नहीं नहीं मनस्वी, इनफैक्ट तुम्हारे मम्मी पापा ने तो मुझे और मेरी माँ को बहुत सपोर्ट किया, मेरी पढ़ाई स्पॉन्सर की, माँ को काम दिलवाया। तुम और तुम्हारी फैमिली कितने अच्छे हैं, मगर प्रॉब्लम मेरे साथ ही थी। मैं यहाँ समन्विता को ढूंढने आया था, मेरी दोस्त समन्विता। मुझे मालूम है, सीरियसली तुम ये जानती थी? सार्थक, मुझे साफ नजर आ रहा था कि तुम दिल्ली किस लिए गए हो। तुम दिल के बहुत सच्चे हो, बहुत अच्छे हो। तुम नहीं जानते, तुम खरा सोना हो, तुम अपनी कामयाबी पर मोहर लगा सकते हो। सार्थक भावुक हो गया, बोला, मनस्वी तुमने बिल्कुल ठीक कहा, आज जीवन का नया साल शुरू हो रहा है, मैं नए नजरिए से जिंदगी को निहारना चाहता हूँ, नए रिश्तों की बुनियाद रखना चाहता हूँ, और उससे भी पहले तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ तुम्हें नजरअंदाज करने के लिए और तुम्हारे फोन अवॉइड करने के लिए। मुझसे दोस्ती करोगी? दोस्त तो हम हमेशा से रहे हैं, हाँ आज से हैं पक्के दोस्त।

एंकर ने खनकती आवाज में कहा, वाकई इसमें प्रेरणा भी है और प्यार भी। सार्थक जी वापस आइए। सार्थक ने कहा, सॉरी मैं भूल गया था मैं कहाँ पर हूँ। दरअसल जब कोई स्टार्टअप की दहलीज पर कदम रखता है ना, तो अपनों के सहारे की बहुत ज़रूरत होती है। शुरुआती दौर संघर्ष से भरा होता है। कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि मैदान छोड़कर भाग जाने का मन करता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, पर मेरे जीवन की नारी शक्ति ने मेरा हौसला बढ़ाया। आज अगर मेरी कामयाबी के पीछे किसी का हाथ है तो वो है मेरी माँ और मनस्वी। तभी मैं क्षितिज की उड़ान ले पाया।

दस्तक खुशियों की, जिसे आपके लिए लिखा था शीतल शाह ने। सपने जरूर पूरे होते हैं अगर उन्हें खुली आंखों से देखा गया हो। आज की कहानी जिसमें सार्थक ने जिंदगी शुरू की एक डिलीवरी बॉय से और बन बैठा एक बहुत बड़े स्टार्टअप का मालिक। इसमें भी तो थे उसके देखे गए सपने, मेड इन इंडिया के सपने, उसकी सोच जिससे कि स्टार्टअप को मिली थी गति और प्रगति। तो संभव सब कुछ है, जरूरत है अगर आप मन में कोई भी बात ठान लें, कोशिश करें तो जरूर कामयाबी आपके भी कदम चूमेगी। और इसी संदेश के साथ हम समेटते हैं आज की कहानी दस्तक खुशियों की। रश्मि कुकरेती को इस कार्यक्रम से दीजिए विदा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर में 7.8% की तिमाही वृद्धि उसकी आर्थिक मजबूती को दिखाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत गतिरोध से नीतिगत सक्रियता तक का लंबा सफर तय किया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में SRCC के शताब्दी समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
1: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कॉलेज और देश के शिक्षा क्षेत्र दोनों के लिए 100 साल के इस अहम पड़ाव के महत्व पर प्रकाश डाला और संस्थापक श्री राम को श्रद्धांजलि दी और उनकी दूरदर्शी सोच को नमन किया। इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉपआउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी गई। डॉक्टर शर्मा रिटायर्ड एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी की जगह लेंगे, जो अक्टूबर 2017 से द्वीप समूह के उपराज्यपाल के तौर पर काम कर रहे थे। डॉक्टर शर्मा अभी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं और राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक मंडल की सिफारिश के बाद 8 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश वल्लूरी कामेश्वर राव को पटना उच्च न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रविन्द्र वी घुग्गे कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रमुख होंगे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस कृष्ण राम महापात्रा और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार अग्रवाल होंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अश्विनी कुमार मिश्रा होंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे और जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी बनाए गए हैं। जगदलपुर स्थित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की विशेष अदालत ने झीरम घाटी माओवादी हमले के सभी 10 आरोपियों को विभिन्न आरोपों में दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपियों पर मुकदमा चलाया

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। गीत सुहाने लेकर हाजिर हूँ मैं सुरभि आपके बीच। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आता नहीं है होने का यकीन क्या बात करूं, आता नहीं है होने का यकीन क्या बात करूं, है दूर बहुत वो ख्वाब नशी क्या बात करूं, क्या बात करूं जो अक्स था मेरी आंखों में, जो छोड़ गया एक शाम कहीं क्या बात करूं, क्या बात करूं ये लोग भला कब सुनते हैं, सब बातें अंदर डूब गईं क्या बात करूं, क्या बात करूं मेरे साथी मुझसे छूट गए, वो लोग नहीं वो ख्वाब नहीं क्या बात करूं, आता ही नहीं होने का यकीन क्या बात करूं, है दूर बहुत वो ख्वाब नशीं क्या बात करूं, क्या बात करूं।

अब वो गलियां वो मकान याद नहीं, कौन रहता था कहां याद नहीं, कोई उजला सा भला सा घर था, किसको देखा था वहां याद नहीं। अब वो गलियां वो मकान याद नहीं, कौन रहता था कहां याद नहीं। भाई जब बात होती है किसी के यादों की, किसी के साथ की और किसी के साथ मोहब्बत की, तो कुछ ऐसे गीत हैं जिन्हें सुनने के बाद दिल बहुत तसल्ली पा जाता है, चाहे दिल कितना भी बेकरार क्यों ना हो। तो चलिए सुनते हैं रफ़ी साहब की आवाज़ में इशारा फिल्म का ये गीत।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़, और आप सुन रहे हैं गीत सुहाने सुरभि के साथ। बहुत खूब कहा है किसी ने कि खैर औरों ने भी चाहा तो है तुझसा होना, खैर औरों ने भी तो चाहा है तुझसा होना, ये अलग बात कि मुमकिन नहीं ऐसा होना, ये अलग बात कि मुमकिन नहीं ऐसा होना, खैर औरों ने भी चाहा तो है तुझसा होना, देखता और न ठहरता तो कोई बात भी थी, जिसने देखा ही नहीं उससे खफा क्या होना, तुझसे दूरी में भी खुश रहता हूँ पहले की तरह, तुझसे दूरी में भी खुश रहता हूँ पहले की तरह, बस किसी वक्त बुरा लगता है तन्हा होना, ये अलग बात कि मुमकिन नहीं ऐसा होना, जिसने देखा ही नहीं उससे खफा क्या होना, खफा क्या होना।

तुम आए हो तुम्हारे साथ भी दूर जाकर देख लेता हूँ। तुम आए हो तुम्हारे साथ भी कुछ दूर जाकर देख लेता हूँ। तुम आए हो तुम्हें भी आजमा कर देख लेता।

कुछ दूर तुम्हारे साथ जाकर देख लेता हूँ, अजब क्या इस करीने से कोई सूरत निकल आए, अजब क्या इस करीने से कोई सूरत निकल आए, तेरी बातों को ख्वाबों में मिलाकर देख लेता हूँ। हवाएं जिनकी आंधी खिड़कियों पर सर पटकती हैं, मैं उन कमरों में फिर शम्मा जलाकर देख लेता हूँ। उड़ाकर रंग कुछ होठों से, कुछ आंखों से, कुछ दिल से, उड़ाकर रंग कुछ होठों से, कुछ आंखों से, कुछ दिल से, गए लम्हों की तस्वीरें बनाकर देख लेता हूँ। तुम्हारे साथ भी कुछ दूर जाकर देख लेता हूँ, तुम आए हो तो तुम्हें भी आजमा कर देख लेता हूँ।

मिल ही जाएगा कभी दिल को यकीन रहता है, मिल ही जाएगा कभी दिल को यकीन रहता है, वो इसी शहर की गलियों में कहीं रहता है, जिसकी सांसों से महकते दरो बाम तेरे, ये मकां बोल अब मकां वो मकीं रहता है। रोज मिलने पे भी लगता था कि जग बीत गए, इश्क में वक्त का एहसास कहाँ रहता है। मिल ही जाएगा कभी दिल को यकीन रहता है, वो इसी शहर की गलियों में कहीं रहता है।

और इसी गीत के साथ गीत सुहाने का ये सफर यहीं तक। हमारी आपकी मुलाकात होगी रात सुरमई में, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर में 7.8% की तिमाही वृद्धि उसकी आर्थिक मजबूती को दिखाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत गतिरोध से नीतिगत सक्रियता तक लंबा सफर तय किया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
1: दुनिया भारत को फ्रेजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कॉलेज और देश के शिक्षा क्षेत्र दोनों के लिए 100 साल के इस अहम पड़ाव के महत्व पर प्रकाश डाला और संस्थापक श्री राम को श्रद्धांजलि दी और उनकी दूरदर्शी सोच को नमन किया। इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉपआउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉ दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी गई। डॉ शर्मा रिटायर्ड एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी की जगह लेंगे, जो अक्टूबर 2017 से द्वीप समूह के उपराज्यपाल के तौर पर काम कर रहे थे। डॉ शर्मा अभी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं और राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक मंडल की सिफारिश के बाद 8 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने स्वस्थ असहमति और विचार विमर्श की संस्कृति के महत्व पर जोर दिया। नई दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ब्रिक्स के सदस्य देशों और सहयोगी देशों के प्रतिनिधिमंडलों को संबोधित किया। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर सऊदी अरब के रियाद पहुंच गए हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सऊदी अरब में भारतीय राजदूत विपुल और सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उपमंत्री डॉ. तारिक अल हमाद ने उनका स्वागत किया। जगदलपुर स्थित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की विशेष अदालत ने झीरम घाटी माओवादी हमले के सभी 10 आरोपियों को विभिन्न आरोपों में दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपियों पर मुकदमा चलाया गया, जिनमें से एक की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। अदालत ने 2 महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 अन्य की हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैन वी क्योंग को हराया।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है रात सुरमई और मैं हूं आपके साथ सुरभि। तो चलिए सबसे पहले सुनवाते हैं आपको ये गीत। फिल्म है सड़क, आवाज है कुमार शानू की।

रात सुरमई आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। ये कहना तो नहीं काफी कि बस प्यारे लगे हमको, ये कहना तो नहीं काफी कि बस प्यारे लगे हमको, उन्हें कैसे बताएं हम कि वो कैसे लगे हमको। हम उनको सोच में गुम देखकर वापस पलट गए, वो अपने ध्यान में बैठे हुए अच्छे लगे हमको। भाई जब इश्क मोहब्बत और प्यार हो जाता है तो ये जो दिल है वो शेर व शायरी भी करने लगता है। यकीन नहीं आ रहा आपको तो सुनिए ये गीत, फिल्म है साजन।

चांद इस घर के दरीचों के बराबर आया, चांद इस घर के दरीचों के बराबर आया, दिले मुश्ताक ठहर जा वही मंजर आया। मैं बहुत खुश था कड़ी धूप के सन्नाटे में, क्यों तेरी याद का बादल मेरे सर पर आया, दिले मुश्ताक ठहर जा वही मंजर आया।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं रात सुरमई और मैं हूँ सुरभि आपके साथ। बहुत खूब कहा है किसी ने कि हंस के बोला करो बुलाया करो, हंस के बोला करो बुलाया करो, आपका घर है आया जाया करो, मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर, मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर, रूप बढ़ता है मुस्कुराया करो, हंस के बोला करो बुलाया करो, आपका है घर आया जाया करो।

रात सुरमई के हम अंतिम पड़ाव की तरफ आ ही गए हैं दोस्तों, और चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और खूबसूरत गीत। बहुत खूब कहा है किसी ने कि सूरज की हर किरण तेरी सूरत पे वार दूँ, सूरज की हर किरण तेरी सूरत पे वार दूँ, दो खज को चाहता हूँ कि जन्नत पे वार दूँ, इतनी सी है तसल्ली कि होगा मुकाबला, दिल क्या है जहाँ भी अपनी कयामत पे वार दूँ, एक ख्वाब था जो देख लिया नींद में कभी, एक नींद है जो तेरी मोहब्बत पे वार दूँ, इतनी सी तसल्ली है कि होगा मुकाबला, दिल क्या है जहाँ भी अपनी कयामत पे वार दूँ।

और इसी गीत के साथ रात सुरमई का ये सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत, हमारी मुलाकात होगी जल्द ही अगले प्रोग्राम में। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर में 7.8% की तिमाही वृद्धि उसकी आर्थिक मजबूती को दिखाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत गतिरोध से नीतिगत सक्रियता तक का लंबा सफर तय किया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
1: दुनिया भारत को फ्रेजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कॉलेज और देश के शिक्षा क्षेत्र दोनों के लिए 100 साल के इस अहम पड़ाव के महत्व पर प्रकाश डाला और संस्थापक श्रीराम को श्रद्धांजलि दी और उनकी दूरदर्शी सोच को नमन किया। इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉपआउट दर शिक्षकों के प्रयासों से ही संभव हो पाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी गई। डॉक्टर शर्मा रिटायर्ड एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी की जगह लेंगे, जो अक्टूबर 2017 से द्वीप समूह के उपराज्यपाल के तौर पर काम कर रहे थे। डॉक्टर शर्मा अभी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं और राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक मंडल की सिफारिश के बाद 8 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर सऊदी अरब के रियाद पहुंच गए हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सऊदी अरब में भारतीय राजदूत विपुल और सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप मंत्री डॉ तारिक अल हमाद ने उनका स्वागत किया। जगदलपुर स्थित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की विशेष अदालत ने झीरम घाटी माओवादी हमले के सभी 10 आरोपियों को विभिन्न आरोपों में दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपियों पर मुकदमा चलाया गया, जिनमें से एक की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। अदालत ने 2 महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 अन्य की हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैन वी कियोंग को हराया। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 56 रन का लक्ष्य रखा था। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में 3 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। मौसम विभाग ने सोमवार तक पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur.

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। 3:11 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम हमराही।

आज के इस कार्यक्रम हमराही में आप सभी का स्वागत है, जिसमें मैं हूं आज आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या, तुझे देखा।

तुझे देखा तुझे चाहा। चले तो दोनों ही थे एक साथ, चले तो दोनों ही थे एक साथ, पता नहीं कैसे रास्ता भटक गए। मंजिल तो दोनों की एक ही थी, मंजिल तो दोनों की एक ही थी, पता नहीं बीच में कैसे अटक गए। की होंगी कुछ गलतियां हम दोनों ने ही एक सी, की होंगी कुछ गलतियां हम दोनों ने ही एक सी, पर यहां गलतियां तुम मेरी और हम तेरी समझ गए। रास्ते तो सभी ठीक थे अपनी मंजिलों के, रास्ते तो सभी ठीक थे अपनी मंजिलों के, फिर भी पता नहीं कैसे रास्ता भटक गए। 3:18 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

राह चलते जो मिल जाते थे कभी, राह चलते जो मिल जाते थे कभी, अब तो बुलाने से भी नहीं आते। आते थे वो हर रोज मेरे सपनों में, आते थे वो हर रोज मेरे सपनों में, अब तो उनके सपने भी नहीं आते। शिकायत खुद से करूं या खुदा से, शिकायत खुद से करूं या खुदा से, रहते हैं वो दिल में और उनके ख्याल दिमाग से नहीं जाते। 3:25 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

हकीकत मानो या फसाना, हकीकत मानो या फसाना, तुमसे मिले हुए बीत गया जमाना। मिलोगे कभी तुम हमसे, रहते हैं इसी उम्मीद में। मिलोगे कभी तुम हमसे, रहते हैं इसी उम्मीद में। दिल लगाने को अच्छा है ये बहाना। रहते हो इतने पास तो मिलते क्यों नहीं, रहते हो जब इतने पास तो मिलते क्यों नहीं। यूं बिना वजह ईद का चांद क्यों ही बन जाना। मिल गए कभी जो तुम हमसे, मिल गए कभी जो तुम हमसे राह चलते, तो फिर क्या बनाओगे ये सोच लो बहाना। हकीकत मानो या फसाना, अब तुमसे मिले हुए बीत गया जमाना। 3:46 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराहे।

भटक सा गया हूँ तेरे एक दीदार के बाद, भटक सा गया हूँ तेरे एक दीदार के बाद, अब करना क्या है कोई मुझे ये बता दे। हट जा मेरे रास्ते से हो सके तो, हट जा मेरे रास्ते से हो सके तो, या फिर तू ही मुझे कोई नया रास्ता दिखा दे। 3:56 हो चुके हैं, अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमराही। लीजिए सुनिए इस प्रोग्राम का आखिरी गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर में 7.8% की तिमाही वृद्धि उसकी आर्थिक मजबूती को दिखाती है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
1: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज

0: आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कॉलेज और देश के शिक्षा क्षेत्र दोनों के लिए 100 साल के इस अहम पड़ाव के महत्व पर प्रकाश डाला और संस्थापक श्रीराम को श्रद्धांजलि दी और उनकी दूरदर्शी सोच को नमन किया। इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉपआउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉ दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी गई। डॉ शर्मा रिटायर्ड एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी की जगह लेंगे, जो अक्टूबर 2017 से द्वीप समूह के उपराज्यपाल के तौर पर काम कर रहे थे। डॉ शर्मा अभी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं और राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर सऊदी अरब के रियाद पहुंच गए हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सऊदी अरब में भारतीय राजदूत विपुल और सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उपमंत्री डॉ तारिक अल हमाद ने उनका स्वागत किया। जगदलपुर स्थित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए की विशेष अदालत ने झीरम घाटी माओवादी हमले के सभी 10 आरोपियों को विभिन्न आरोपों में दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपियों पर मुकदमा चलाया गया, जिनमें से एक की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। अदालत ने दो महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 अन्य की हत्या के प्रयास का दोषी पाया। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने जयपुर के आईओएन डिजिटल जोन सीतापुर परीक्षा केंद्र के प्रभावित उम्मीदवारों के लिए नीट पीजी 2026 की परीक्षा आयोजित की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जयपुर में 5 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित की गई और बिना किसी परेशानी के सम्पन्न हुई। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैन वी क्योंग को हराया। महिला टी20 क्रिकेट एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 56 रन का लक्ष्य रखा था। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में 3 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। मौसम विभाग ने सोमवार तक पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मछुआरों को अगले 2 से 3 दिनों तक अरब सागर में नहीं जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi said India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. Addressing the gathering at the centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce, SRCC, in New Delhi yesterday, Mr. Modi said the world is watching India become the fastest growing major economy. Contrasting past struggles with today's achievements, the Prime Minister emphasized.

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। 4:11 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम अरुणिमा।

कुछ शिकायतें भी बनी रहने दीजिए तेरे मेरे दरमियान, कुछ शिकायतें भी बनी रहने दीजिए तेरे मेरे दरमियान, हर रिश्ते में होती हैं कुछ तो मजबूरियां। सब कुछ ठीक चले ऐसा कोई रिश्ता नहीं, सब कुछ ठीक चले ऐसा कोई रिश्ता नहीं, पर कुछ भी ठीक ना चले ना बढ़ाइए रिश्तों में वो दूरियां। 4:11 हो चुके हैं, कार्यक्रम अरुणिमा में आप सभी का स्वागत है, जिसमें मैं हूं एक बार फिर से आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही बेहतरीन से गीत के साथ।

एक बहुत ही प्यारा सा गीत अभी अभी आपने सुना, ये अलबेली प्यार की राहें। कर लो सफर इस जिंदगी के सभी पूरे, कर लो सफर इस जिंदगी के सभी पूरे, वरना जिंदगी तो सफर कर ही रही है। घूम लो तुमको जहां

0: जितना मर्जी है घूमना, घूम लो तुमको जहां जितना मर्जी है घूमना, वरना ये धरती तो घूम ही रही है। घूम लो तो बन जाएंगी कुछ यादें आगे के लिए भी, घूम लो तो बन जाएंगी कुछ यादें आगे के लिए भी, वरना घर बैठे तो ये जिंदगी गुजर ही रही है। चार बजकर 26 मिनट हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चित के साथ।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

दिन रात उलझनों के बारे में सोचोगे तो फिर उलझते ही चले जाओगे। दिन रात उलझनों के बारे में सोचोगे तो फिर उलझते ही चले जाओगे। सब कुछ छोड़कर बैठो जरा सुकून से कुछ पल। सब कुछ छोड़कर बैठो जरा सुकून से कुछ पल। धीरे धीरे देखना खुद को सुलझा हुआ ही पाओगे। 4:34 हो चुके हैं। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चित के साथ।

उड़ना भले ही सीख लो आसमान में सबसे ऊपर, उड़ना भले ही सीख लो आसमान में सबसे ऊपर, पर नीचे अपनी जमीन का भी ख्याल रखना। आना ही पड़ेगा एक दिन जमीन में तुमको नीचे, आना ही पड़ेगा एक दिन तुमको जमीन पर नीचे, सारी जिंदगी तो कोई हवा में नहीं रहता। 4:46 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर में 7.8% की तिमाही वृद्धि उसकी आर्थिक मजबूती को दिखाती है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
1: दुनिया भारत को फ्रेजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कॉलेज के संस्थापक श्रीराम को श्रद्धांजलि दी और उनकी दूरदर्शी सोच को नमन किया। इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉ दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया है।

0: राष्ट्रपति भवन की एक प्रेस विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी गई। डॉक्टर शर्मा रिटायर्ड एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी की जगह लेंगे, जो अक्टूबर 2017 से द्वीप समूह के उपराज्यपाल के तौर पर काम कर रहे थे। डॉक्टर शर्मा अभी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं और राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉपआउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है। जगदलपुर स्थित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए की विशेष अदालत ने झीरम घाटी माओवादी हमले के सभी 10 आरोपियों को विभिन्न आरोपों में दोषी ठहराया है। इस मामले में कुछ 11 आरोपियों पर मुकदमा चलाया गया, जिनमें से एक की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। अदालत ने 2 महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 अन्य की हत्या के प्रयास का दोषी पाया। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर सऊदी अरब के रियाद पहुंच गए हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सऊदी अरब में भारतीय राजदूत विपुल और सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उपमंत्री डॉ तारिक अल हमाद ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने जयपुर के IoN डिजिटल जोन सीतापुरा परीक्षा केंद्र के प्रभावित उम्मीदवारों के लिए कल नीट PG 2026 की परीक्षा आयोजित की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जयपुर में 5 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित की गई और बिना किसी परेशानी के संपन्न हुई। इससे पहले पिछले महीने की 30 तारीख को राजस्थान के जयपुर में परीक्षा केंद्रों पर बिजली की आंतरिक समस्या के कारण 2,445 उम्मीदवारों की परीक्षा पूरी नहीं हो पाई थी। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटेल भारत के 3 दिन के दौरे पर कल भारत आएंगे। इस दौरान वे दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार वे चेन्नई भी जाएंगे और IIT मद्रास के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी क्योंग को हराया। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 56 रन का लक्ष्य रखा। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में 3 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल में हिमालय की तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ चलने की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi said India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. Addressing the gathering at the centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce, SRCC, in New Delhi yesterday, Mr. Modi said the world is watching India become the fastest growing major economy. Contrasting past struggles with today's achievements, the Prime Minister emphasized that terrorism has been defeated with armed forces confidently striking enemies in their own homes and peace restored from Jammu and Kashmir to the northeast.
2: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये 7.8

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 5:10 हो चुके हैं और हमेशा की तरह अब समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है भोर सुहानी।

रात तो हर रोज एक जैसी ही होती है, रात तो हर रोज एक जैसी ही होती है, इंतजार तो हमें उस सुबह का रहता है जिसके साथ

का दिन कुछ नया होगा। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ कार्यक्रम भोर सुहानी में। आप सभी का स्वागत है, जिसमें आज मैं हूं एक बार फिर से आपके साथ, आपका ही दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक प्यारे से गीत के साथ।

तलाश तो अब बस मुझे सुकून की है, तलाश तो अब बस मुझे सुकून की है। जरूरतें तो कभी पूरी नहीं होती, कुछ आज भी हैं, कुछ कल भी थीं और कुछ आगे भी रहेंगी। 5:19 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी।

अब जीवन में जागना है तो एक नई उम्मीद के साथ ही जागिए। अब जीवन में जागना है तो एक नई उम्मीद के साथ ही जागिए। सिर्फ सोकर उठने को जागना नहीं कहते। 5:27 हो चुके हैं। सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी।